0: और सरकार ने खुद स्वीकार किया इस बात को कि वहाँ पर इस तरह की घटना घटी है, और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एसआईटी में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सीसीटीवी बंद कर करके जो चढ़ावा आया है उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है। तो ये जो आस्था के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म, हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार सीसीटीवी ऑफ कर दें, लाइट बंद कर दें, कोई ना देखे, तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें। तो हमारे प्रभु श्री राम है, प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है, राम धन में अगर चोरी हुई है, रख दें दोबारा, तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ़ कर देंगे।
1: क्या मंदिर ट्रस्ट दोषी है? क्या चीफ मिनिस्टर भी दोषी है?
0: दोषी मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं विपक्ष में हूँ, मैं दोषी नहीं कहूँगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों। और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पर इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है? और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जांच कर रही है एसआईटी, आपने रिपोर्ट किसको दी है? आपने रिपोर्ट किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच एसआईटी किसने बनाई है? एसआईटी किसने बनाई और जांच किसको दी गई है? क्या एसआईटी की भी जांच होगी? क्या एसआईटी की जांच के लिए कौन सा संस्था होगी? फिर
1: आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही निगरानी भी कर रहा है, चोरी भी वही कर रहा है?
0: जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने एसआईटी बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको माफ़ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें, क्योंकि ये बात खुल गई है। और केवल ये नहीं खुली, सुनने में आया है कि जो अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं,
1: आपने कहा कर्नाटक से तार जुड़े हैं, वो कैसे?
0: मैं नहीं कह रहा हूँ, एक एक अयोध्यावासी जानता है कि कुछ चढ़ावा कर्नाटक तक जाता था, और सुनने में ये आया है कि अंडरग्राउंड और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, संगी साथी, जो चुनाव के मैनेजमेंट में लगते थे, जो चुनाव में जगह जगह पर लोगों को भेजते थे, जो फर्जी वोट भेजा जाता था, उसके वो हेड थे, वहाँ तक कुछ चढ़ावा पहुँचा है।
1: तो आप इसको एसआईआर से जोड़ के देख रहे हैं, चुनाव से जोड़ के?
0: नहीं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो पूरे देश में वोट का मैनेजमेंट करते थे, तो उत्तर प्रदेश के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम वो आए तो हम उनसे सवाल तो करें।
1: मुख्यमंत्री ने कहा है कि आइए चलिए मथुरा चलते हैं, कृष्ण मंदिर बनाते हैं, आपके कार्यकाल में नहीं बन पाया कृष्ण मंदिर।
0: नहीं भाई, प्रभु श्री राम के यहाँ चढ़ावा चोरी कर लिया, माखन चोर जिन्हें बोलते हैं उनका भी चढ़ावा चोरी करने का इरादा है क्या आपका? तो आप कहाँ कहाँ चोरी करना चाहते हैं भाई? आपको परेड अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी है, आप अपनी क्रेडिबिलिटी तो साबित करें, इधर उधर की बातें ना करें। पूरा देश जानना चाहता है कि चढ़ावा कहाँ गया है, और जब सीसीटीवी में वो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है।
1: एक नारा भी दिया है आपने कुछ?
0: नहीं, मैंने नारा ये दिया कि भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है।
1: एक और मुद्दा है जो जिसके लिए आपने बहुत इस पे किया, पेपर लीक और जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर पेपर लीक कैसे रुकेगा?
0: देखिए, पढ़ाई आसान हो, पढ़ाई में, परीक्षाओं में आसान तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए, सरकार को कम से कम ये निश्चित करना चाहिए पेपर लीक ना हो, परीक्षाएं रद्द ना हो। और इसलिए क्योंकि बहुत सारे नौजवानों का भविष्य जुड़ा हुआ है, और भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, और आज के समय पर अगर हम ये नहीं तय कर सकते कि परीक्षा कैसे होगी, तो आज टेक्नोलॉजी है आपके पास, और अगर कहीं कोई ऐसी बात होती है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए नीट का परीक्षा का इतना पेपर लीक हुआ, करोड़ों लोग परिवार जुड़े थे, उन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, दोबारा उनको एग्जाम लिखने लगा।
1: आपको लगता है ये नेशनल इशू है और इंडिया गठबंधन?
0: नहीं, ये बीजेपी के लिए इशू है, ये बीजेपी को सीरियस लेना। जब आप विकसित भारत अमृत काल की बात कर रहे हैं और आपके यहाँ पेपर लीक हो रहा है, आप दुनिया के में वर्ल्ड इकोनॉमी के वर्ल्ड फोरम पर ही आप जाते हैं, और आपके करोड़ों परिवार इस बात के लिए परेशान है कि आप पेपर नहीं करा पा रहे हैं। आप दुनिया के प्लेटफॉर्म पे खड़े होना चाहते हैं, लेकिन आप एक सामान्य पेपर नहीं करा पा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। आप एयरफोर्स से क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं, क्या दुनिया में ये उदाहरण बनेगा हमारे भारत का?
1: पिछले दिनों एक अग्निकांड हुआ यहाँ पे, उसके बाद आपने बहुत कुछ कहा, उसको भ्रष्टाचार से जोड़ा है।
0: देखिए, जो बच्चों की जान गई है लखनऊ में, जो बच्चे बच सकते थे, हमारे अगर फोर्स को सही इक्विपमेंट मिलते, ट्रेनिंग अच्छी होती, तो शायद वो दीवार तोड़ देते, और समय पे दीवार तोड़ देते तो सफोकेशन से मरते नहीं। जलने वालों की संख्या कम है जबकि सफोकेशन से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो ये दोषी कौन है? दोषी तो सरकार है ना। इसके लिए सरकार आखिरकार भ्रष्टाचार कर रही थी, और भ्रष्टाचार इसलिए कर रही थी क्योंकि नियमों का पालन नहीं करना है उन्हें।
1: आपने क्यों कहा कि 2027 का चुनाव अंतिम हो?
0: मैंने अंतिम इसलिए कहा, बंगाल का चुनाव देखने के बाद सेंट्रल फोर्स से आप चुनाव लूट लेंगे, आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? आप ईडी सीए इनकम टैक्स लगा देंगे। कभी हिटलर ने भी यही किया था। हिटलर ने उस समय के अपने जर्मनी के पार्लियामेंट में जो कानून अपने लिए पास करना था, फोर्स लगा करके कानून पास कर दिया था। ये 60-70 साल पुरानी बात है, और मुझे तो लगता है यही दोहराना चाहते हैं। बंगाल में चुनाव हुआ, क्या हुआ? आप ये नारा दे रहे थे 400 पार का, और जनता ने समझ लिया कि आप वोट के अधिकार पाने के बाद वोट से आप संविधान बदलेंगे। जनता ने उन्हें नहीं जीतने दिया। जो वोट से नहीं कर पाए वो अब सांसद खरीद के करना चाहते हैं। तो आप सांसद को क्यों डरा रहे हो?
1: जिस तरह से टीएमसी टूटी, शिवसेना टूटी, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पर भी नज़र रहेगी उनकी?
0: नहीं, हमारी इसलिए नहीं टूटेगी, हमारी पीढ़ियों से जुड़े लोगों की पार्टी है। और फिर क्या हमारे टूटने के बाद ही गिनती पूरी होगी? बीजेपी इतने गेम खेलते हैं, उन्हें गिनती पता है, उनको गिनती क्या चाहिए? लेकिन मैं तमाम सांसदों से कहना चाहता हूँ कि अगर ये बिल पास हो गया, जो महिला आरक्षण के साथ साथ डीलिमिटेशन का जो बिल पास हो रहा है, उसके बाद बहुत सारे सांसद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो आज बिल पास करेंगे, भविष्य में वही नहीं चुनाव लड़ पाएंगे। इसलिए अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोचें।
1: आपके ममता बनर्जी से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, आप गए भी कलकत्ता, आपके डीएमके से भी अच्छे रिश्ते हैं, क्या आप चाहेंगे डीएमके इंडिया गठबंधन में आए, कुछ कोशिश करेंगे?
0: नहीं, मैं डीएमके के सभी नेताओं से बड़े अच्छे संबंध हैं, और डीएमके का जो इशू है वो जेन्यून है। मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो जो हमारा कंसर्न था, जो हमें अपनी बात कहनी थी उस प्लेटफॉर्म पे, मैंने कही, और वो उस बात को अगर सब मानेंगे, रीजनल फोर्सेस की, रीजनल पार्टीज़ की अपनी बातों को सम्मान के साथ अगर बड़े दल स्वीकार करेंगे तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा।
1: आपने कहा कि इनकाउंटर और जितने भी बुलडोजर चले हैं उसमें अधिकतर पीडीए के लोग,
0: जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, घर पीडीए के टूटे हैं, इनकाउंटर फेक पीडीए के हुए हैं, और जो इनकाउंटर करने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के सुजाती लोग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 10 साल का आंकड़ा निकलवाइए, जिन लोगों का फेक इनकाउंटर हुआ है वो सब पीडीए के लोग हैं, जो करने वाले हैं वो मुख्यमंत्री के सुजाती लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आंकड़े और सर्विस की जो लोग पोस्ट हैं वो आंकड़े में देख रहा हूँ।
1: ये जो पार्टियाँ टूटती है, किसका वन नेशन वन इलेक्शन से कोई ताल्लुक है इसका?
0: सोचना तो हमें ये चाहिए कि जो प्रधानी का चुनाव नहीं करा पा रहे, वो कह रहे वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे, और वन नेशन इलेक्शन इसलिए ये नारा दे रहे हैं जिससे डिलिमिटेशन वो पास कर दें, महिला आरक्षण वो ले आए, अपने हिसाब से पार्लियामेंट बना लें, अपना बहुमत रहे, और विपक्ष की भूमिका कोई देश की राजनीति में ना रहे।
1: कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे यूपी,
0: इंडिया गठबंधन और मजबूत करेंगे।
1: राजेंद्र गौतम को बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि कुछ एक संदेश है आपके? देखिए, मायावती जी के लिए भी?
0: नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मैं पीडीए की ताकत, पीडीए का जनसमर्थन, और जो पीड़ित दुखी हैं और जो अपमानित हो रहे हैं, उन्हें सबको पीडीए के अंदर ला रहा हूँ। अगर कोई भी लगता है पीड़ित दुखी अपमानित हो रहा है, तो हम पीडीए के लोग उनके साथ हैं।
1: रास्ते खुले रखे, छोटी सी
0: नहीं, सबके साथ। देखिए, जो गठबंधन हम लोगों ने अभी अभी किया था, और 2024 में जिस पे रिजल्ट इतना अच्छा आया है, तो अब उस गठबंधन को और मजबूत करें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे गठबंधन कमजोर दिखाई दे।
1: कांग्रेस को सीख दे रहे हैं?
0: नहीं, मैं किसी दल को सीख नहीं दे सकता हूँ, कांग्रेस मुझसे बहुत जानकार पार्टी है।
1: तो बातचीत शुरू हुई है, अभी होनी है?
0: नहीं, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो रणनीति होगी वो बता नहीं सकते।
2: That was Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party speaking exclusively to NDTV. Now, the Congress state chief has also claimed that the delegation which has to visit, which was basically the Congress delegation that was going to be visiting the Ram Temple today, has been put under house arrest and has been confined in the hotel. Also, we have OAC there slamming the BJP government and saying that if the accused have, had they been Muslims, their house would have been bulldozed. And no action is being taken against Champa.

0: Rai. Let's get you the political reactions coming about.
1: आपने एसआईटी बना दिया तो मेरे हमको लगा कि उसी दिन से कवर अप स्टोरी शुरू हो गई. ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है साधु संतों का.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and

0: क्रेडिबिलिटी तो साबित करें, इधर उधर की बातें ना करें। पूरा देश जानना चाहता है कि चढ़ावा कहाँ गया है, और जब सीसीटीवी में वो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है।
1: अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
2: हम लोगों को कल रात से ही, हमारे साथियों को, हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में, एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया। क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। और फिर रात को पुलिस वहां पहुंचकर लगभग 11:30-11 बजे हमें वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया है, और पूरी तरीके से यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से रोका जा रहा है।
3: आपने SIT बना दिया तो मेरे, हमको लगा कि उसी दिन से कवर अप स्टोरी शुरू हो गई। ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है, साधु संतों का प्रेशर बढ़ रहा है, अयोध्या वासियों का मतलब बढ़ रहा है, क्या नहीं हुआ। ये जो अभी चल रहा है ये कठपुतलियाँ हैं, कठपुतली को नचाने वाला कौन पर्दे के पीछे है, SIT की जांच तब सफल होगी जब उन तक उनके हाथ पहुँचे।
4: अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते, और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है, जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद, शायद कल पुलिस कस्टडी ले ले।
5: कार्रवाई तो उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो बड़े लोग हैं, यहाँ छोटे लोगों को ये बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये दूध का दूध पानी का पानी जब होगा, जब एक विश्वसनीय संस्था से जो पारदर्शी हो उसकी जांच कराई जाए। भ्रष्टाचार का मामला, इसमें कौन सी राजनीति है, कायिक राजनीति है। हम चाहते हैं गुणदोष के आधार पर कार्रवाई हो, जो लोग इसमें शामिल हैं वहां की दौलत को चुराने में जो लोग शामिल, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं समझता इसमें कोई राजनीति है।
6: And the investigation into the alleged Ram temple donation theft is widening. As per sources, former Trust General Secretary Champat Rai has recorded his statements before the police, denying any role in the alleged theft. Sources say he maintained that he acted immediately after learning about the missing offerings, ordered action against the accused. Meanwhile, the main accused, Lovekush, is under the scanner after investigators found he allegedly transferred cash into his wife's bank accounts. The investigation has also raised serious concerns over the hiring of outsourced staff. As per sources, Ayodhya police have filed an application to interrogate some of the accused in jail, but the court has not yet granted permission. Now, we'll shift our focus to some updates from the state of Karnataka. Row over the special intensive revision of electoral rolls has now reached Karnataka as the Election Commission prepares to begin a SIR exercise in the state. Political battle has intensified. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar has urged people to ensure their names remain on voters' list, warning that those who lose their voting rights could also face difficulties in accessing government welfare benefits. He cited the example of West Bengal, claiming that several people allegedly lost benefits after issues related to voter verification there. BJP has hit back strongly, accusing Congress government of spreading fear. Party says the Congress is worried because SIR exercise will identify and remove bogus voters. We have some reactions and statements. Take a look.
7: ಯಾರು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಆದೇಶ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ

0: In news just coming in, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has launched yet another sharp attack on the opposition parties, accusing them of changing their stance on matters of faith and heritage. Addressing a public gathering, Yogi Adityanath has said those who once questioned the very existence of Lord Ram are now eager to associate themselves with Ayodhya, claiming it reflects a sense of remorse over their past actions. He added that the opposition appears unsettled by the rapid development of religious centres like Ayodhya and Kashi, and are now scrambling to reclaim political ground. Stepping up the offensive, the Chief Minister had earlier also challenged the Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav to take a clear stand on the Krishna Janmabhoomi issue, asking whether the opposition would support a similar movement as seen in Ayodhya. Yogi Adityanath asserted that faith cannot be used selectively for political convenience, stressing that Ram belongs to everyone, but also reminding critics that in his words, Lord Ram can distinguish between right and wrong intentions. Listen in to what the Chief Minister of Uttar Pradesh said.
1: 2017 ke pehle jab Uttar Pradesh mein Ram bhakt kehta tha ki Ram lala hum aayenge mandir wahi banayenge, aur Ram bhakton par jo samay goli chalate the, aaj ve आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। यह आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, आपके वोट बैंक की ताकत है। 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं।
0: Ajay Dubey now joins me live. Ajay, you have the Uttar Pradesh Chief Minister doubling down on the opposition over Ayodhya and beyond.
2: Definitely, say this Ayodhya issue is becoming political day by day, and continuously opposition is trying to grab BJP on this issue. And Chief Minister, wherever he's going, he's on the tour of Western Uttar Pradesh on a daily basis. He's targeting specifically to Samajwadi Party, to Akhilesh Yadav. Whatever statement they are talking about, Akhilesh Yadav talked about going to Ayodhya. He talked about the thing happening in Ayodhya. They are Akhilesh Yadav calling BJP CC means Chandacho. That is what they are all giving blames on. But in reply, Chief Minister is continuously targeting. Right now, this issue is becoming a political issue in Uttar Pradesh. Initially, when what we are being informed by the sources that a trust wanted to book an FIR on this issue, to file in case on this issue, but because of the political drama, they decided to request to Chief Minister to found an SIT. So this is what happened earlier, but right now the political statement, whatever they are targeting, opposition is continuously targeting Chief Minister Yogi Adityanath, and in answer Chief Minister is targeting opposition, giving answers to their questions and their allegations in his political speeches.
0: What in the Samajwadi Party's response to the dare issued by the UP Chief Minister on the Krishna Janmabhoomi?
2: I've asked this question to the spokesperson of Samajwadi Party regarding this issue. So what in answer, what we are being informed is that if they are saying that BJP can only talk about temple and other issues, they are the reason this thing happened in Ayodhya. They are behind this scam in Ayodhya, this robbery. They are calling it a robbery. They are saying it is happening because of BJP. So the leaders of Samajwadi Party, whatever reclaim given by Chief Minister regarding the Mathura case, they're not answering on the issue, but they're saying that he is just making a political statement. He's not having any issue to talk about. They're targeting Chief Minister on this, but on a daily basis, Chief Minister is targeting opposition on their statements regarding various issues, including Ayodhya, including things happening in Ayodhya, and he's targeting opposition on a daily basis.
0: I also have Mr. Rai on the phone line with us, Uttar Pradesh Congress Chief. Mr. Rai, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? Uttar Pradesh Chief Minister ने अभी बोला है कि opposition अपना stand change करता रहता है Ayodhya के ऊपर.
3: नहीं नहीं, अब Congress की बात मैं करना चाहूँगा.
0: जी.
3: Congress का stand clear है. हम भगवान भक्त हैं, भगवान के इनकी तरफ अधर्मी नहीं है, दिखावटी नहीं है कि भगवान राम का पैसा खा गए, चोरी कर लिए. कांग्रेस दान हमेशा करती रही है, चाहे वो अपनी संपत्ति का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे अपने पूरे जो समाज के लिए समर्पण है वो कांग्रेस पार्टी का है. भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का चढ़ावा खा गई, चंदा चोरी कर गई, जमीन का घोटाला कर गई, और गौकसी जो सबसे ज्यादा गौकसी हो रही है इसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गौ का मांस बेचा जा रहा है पूरे दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश सबसे एक नंबर पे है उसमें, ये उसका पैसा खा रहे हैं। वो क्या बात करेंगे चढ़ावा चोर, ये चढ़ावा चोर लोग हैं जो गेरुआ वस्त्र पहन के पूरा अंदर काला है इनका और ऊपर से गेरुआ वस्त्र ढके हुए हैं योगी जी, ये पूरे भ्रष्ट लोग हैं जो पूरे भगवान राम के मंदिर को या आज भगवान के राम के जन्म स्थान को इन्होंने बदनाम किया है, जहां भगवान राम जन्म लेकर जहां पे आज पैदा हुए उस अयोध्या को कलंकित किया आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, भगवान राम का चोरी चोरी कर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, भगवान राम के आदर्श हम चलने वाले हैं, उनके दिखाए हुए मर्यादा का हमेशा पालन किया है कांग्रेस पार्टी ने।
0: जी, बट हाउ विल द कांग्रेस बी टेकिंग दिस मूवमेंट फॉरवर्ड सर व्हेन इट कम्स टू द अयोध्या डोनेशन थेफ्ट राव?
3: देखिए ये सभी लोग उसमें जो छोटे लोगों को बचाया जा रहा है, बड़े बड़े छोटे लोगों को जेल भेजा गया, बड़े लोगों को बचा रहे हैं, अनिल मिश्रा, चंपत राय, नीपेंद्र मिश्रा और आप गोविंद्र गिरी, ये जितने भी लोग हैं ये सभी लोगों को बचाया जा रहा है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने ही ये सारा काम छोटे लोगों से कराया है, छोटे लोगों को आपने जेल भेज दिया। योगी जी से जरा पूछिए कि वो जो आठों लोगों का पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं लिया अभी तक, रिमांड लेना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी, पूछाया उनको जेल भेज दिया आपने, आप छोटे छोटे मामले में तो रिमांड लेती है पुलिस, आपने 14 दिन के जेल भेज दिया, इससे साबित होता है कि पूरे लोगों को ये योगी जी बचा रहे हैं, और जिनको जितना हजारों हजार रुपये का जो घोटाला हुआ है भगवान राम के दरबार का चोरी हुआ है वो सारे पैसे ये ऊपर तक गए हैं, इसकी जाँच माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग हाईकोर्ट से जज से जाँच होनी चाहिए, हमारी मांग है, ये हम पहले से भी कह रहे हैं फिर ये बात कह रहे हैं।
0: Mr. Rai, thank you for joining me on the phone line there. In fact, the Congress State Chief, Mr. Rai, who we were just speaking to, has claimed that the delegation which has to visit Ram Temple today has been put under house arrest and has been confined to the hotel. The proposed visit was scheduled amid the ongoing controversy over alleged embezzlement of funds at the Ram Temple. Targeting the BJP, he has said that the Uttar Pradesh government has got scared and had him arrested to prevent the delegation from going to Ayodhya. The nine-member delegation comprises State Congress President Ajay Rai, MPs Kishori Lal Sharma, Rakesh Rathore, Ujjwal Raman Singh and Tanuj Punya, MLA Virendra Chaudhary, former MP AP Gautam, former MLC Deepak Singh and former MLA Meeta Gautam are part of that delegation.
4: हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में, एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया था, क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी, और फिर रात को पुलिस वहां पहुंचकर लगभग 11:30-11 बजे हमें वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया है और पूरी तरीके से यहां प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से रोका जा रहा है।
5: सरकार को हम लोगों को जाने देना चाहिए, दर्शन का लाभ हम लोगों को भी मिले, हम लोग भी आकांक्षी हैं और निश्चित तौर से अगर सरकार के मन में कोई खोट नहीं है तो वो हम लोगों को जाने देगी। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका है

0: अगर बड़ी मछलियों को अगर उनको लगता है कि उनका नाम उजागर हो जाएगा, जैसा बाबा बागेश्वर धाम कह रहे हैं, हम तो उनसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, अपील करेंगे कि लोगों के नाम उजागर करने चाहिए, क्योंकि पाप है जिन लोगों ने किया है और इस पाप का दंड भी मिलेगा।
1: ये किस तरह का प्रशासन ये कर रहा है कि किसी हिंदू को दर्शन करने से वंचित रख रहा है। तो अगर हम दर्शन कर लेंगे तो क्या मतलब, ये चंदा चोरी तो रोक नहीं पाए जिसको इनको रोकना था, और किसी को दर्शन करने से ये रोक रहे हैं, ये मतलब बहुत अन्याय मतलब कर रहा है प्रशासन। तो इस तरह की ये नहीं इनको करना चाहिए। राम मंदिर सबका है और सब लोगों को दर्शन करने का अधिकार है। कौन से हिंदू धर्म में लिखा है कि कुछ लोग ही दर्शन कर सकते हैं?
2: इस पार्टी के लोग जब अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने जाते हैं तो हिंदुओं के मनों में आशंका पैदा होती है। उनको लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था। जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, जो राम को मानते नहीं हैं, तो फिर दर्शन करने का ड्रामा भी उन्हें नहीं करना चाहिए।
3: Like I said earlier, the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has slammed the Samajwadi Party, saying it holds the Babri ideology. He added that Ram Rajya will soon prevail and now it's time for Banke Bihari. Meanwhile, Akhilesh Yadav, speaking exclusively to NDTV, said faith of millions of devotees is being trifled with and added that there is no religion or shame in BJP's dictionary. Further, he attacked BJP, saying they will loot Kashi and Mathura too. Also, AIMIM Chief Asad Uddin ओएससी हैज स्लैम्ड द बीजेपी गवर्नमेंट।
4: भाई प्रभु श्री राम के यहाँ चढ़ावा चोरी कर लिया, माखन चोर जिन्हें बोलते हैं उनका भी चढ़ावा चोरी करने का इरादा है क्या आपका? तो आप कहाँ कहाँ चोरी करना चाहते हैं भाई? आपको पहले अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी तो साबित करें, इधर उधर की बातें ना करें। पूरा देश जानना चाहता है कि चढ़ावा कहाँ गया है, और जब सीसीटीवी में वो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है।
5: अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए।
6: अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते, और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर कर देते। केस क्लोज्ड। बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप? किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद, शायद कल पुलिस कस्टडी ले ले।
7: कार्रवाई तो उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो बड़े लोग हैं। यहाँ छोटे लोगों को ये बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? और मैं समझता हूँ ये दूध का दूध पानी का पानी जब होगा, जब एक विश्वसनीय संस्था से जो पारदर्शी हो उसकी जांच कराई जाए। भ्रष्टाचार का मामला इसमें कौन सी राजनीति है? कायिक राजनीति है। हम चाहते हैं गुणदोष के आधार पर कार्रवाई हो। जो लोग इसमें शामिल हैं वहां की दौलत को चुराने में जो लोग शामिल, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई राजनीति है।
8: सरकार को छूटती है कि अगर नीचे छोटे मोटे लोगों को पकड़ के आए और सब हम इस चीज को खत्म कर देंगे, तो वो नहीं होने वाला। इसमें तो जो है जो बड़े बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि इतनी लंबी चोरी है सैकड़ों हजारों करोड़ की कि वो थोड़ा कर सकते हैं खाली, जब तक सहमति ना हो। तो इसको लेके जो है बहुत दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है ये मामला, और बहुत गंभीर मामला होता जा रहा है। ऐसी सार्थक जाँच होनी चाहिए और ऐसे लोग पकड़े जाने चाहिए जो जो है जो बड़े लोग इसमें शामिल हैं, उन सबको पकड़ने का प्रयास होना चाहिए।
3: News just coming in, the police have tightened their grip on the relatives of the 8 accused in the Ayodhya donation theft row. and the police have issued notices to approximately 140 people related to the 8 accused. They were asked to appear with their bank statements and property details as soon as possible. We have Ajay Rai back with us. We have Ajay Rai back with us on the story. Ajay, just a quick word on the simultaneous raids that have been conducted also at the homes of the 8 accused in the Ram Temple donation theft case, because they're trying to widen and track down the money trail.
9: Definitely, see, this thing we have informed how in this case, when police started doing their investigation, they have reached to the houses of all the 8 accused. They are in jail, but police is doing investigation, and while asking questions to their family member, what the police is targeting is to get more and more detail regarding their financial condition, not just their family members, but their friends, with their close relatives, because police is not getting any cyber detail regarding these accused. They have deleted their WhatsApp, they have deleted their financial details in mobile. So police is also trying to get more and more names, and they are trying to get more and more detail on this case. Police is asking questions to their neighbors also to get the detail, how their life changes, how financially they are doing, and who all are very close allies to them. So they have profiled few of these characters, and they are asking, they are about to ask them questions. They're about to call them out and ask questions regarding the financial development. So this is what they're trying to do, to get more and more details about this case from the accused.
3: All right, Ajay Dubey, thanks for joining me live. Meanwhile, let's just bring you the latest into the investigations into the alleged Ram Temple donation theft. Well, like I said, the probe is widening. As per sources, former Trust General Secretary Champath Rai has recorded his statement before the police denying any role in the alleged theft. Sources say he maintained that he acted immediately after learning about the missing offerings, ordered action against the accused. Meanwhile, the main accused, Lovekush, is under the scanner after investigators found he allegedly transferred cash into his wife's bank account. That's the reason why you have that net also widening and the relatives also under the scanner. The investigation has also raised serious questions over the hiring of outsourced staff. According to sources, Ayodhya police have filed an application to interrogate some of the accused in jail, but the court has not yet granted permission. Well, the Ram Mandir donation theft probe is widening with investigators expanding the list of people under scrutiny. Police have now recorded the statement of former Trust General Secretary Champath Rai as part of the ongoing investigation. Sources say the next round of questioning could include former Trust official Anil Mishra and accounts officer Gopal Rao. But the probe doesn't stop there. Investigators are also preparing to question nearly 140 others, including Trust members, priests, bank staff, as they examine the movement of donation funds and establish individual roles. With more statements yet to be recorded, the investigation is now entering a critical phase, and adding to the list are the family members of the 8 accused. Well, Padmaja Joshi from NDTV has spoken with VHP Chief Alok Kumar on the theft probe. Listen in.
10: So what happens from here on? Joining us also is the world president of the Vishwa Hindu Parishad, the Alok Kumarji. Thank you very much, sir, for speaking to us. I want to start by asking you, of the investigation so far, are you satisfied?
11: Well, yes. The police inquiry has started. The 8 persons named in it have been arrested. Some things have been recovered from them. And I would call it only a beginning, because the FIR itself says these 8 persons, the persons who were named in the SIT report and others, the FIR also requests that the entire spectrum, a comprehensive inquiry should be made. Which in my understanding means that all the allegations that have appeared on social media against whosoever are to be probed. So the beginning is good, but the substantial is to happen.
10: Are you referring to the fact, what many other people have also said, that it's not just the small fish, the small fry who should be investigated, the big fish shouldn't be allowed to get away? Do you think there are bigger fish also who are involved in this?
11: I agree with you. The small fish the big fish. Not only the rooks, but Raja and Wazir.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसो थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आर्थर मसाला।
10: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन।
11: TV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
10: When stories have impact.
12: Padmasar Joshi, managing editor and prime-time anchor.
10: Then news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
11: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding. And I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.
13: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
14: द न्यूज़। आयुष, सिंस व्हेन डू वी डू स्क्रिप्ट्स? फेयर पॉइंट। पिक्चर दिस, द बिगेस्ट स्टेज, फ्लड लाइट्स, 4K, द वर्क्स। वेयर इज द हुक? देयर इज गोइंग टू बी सेलिब्रिटीज एंड गारंटीड आईपॉड्स। वेयर इज द हुक? Think about this. Front page advertisements and hoardings.
15: Bro, where's the hook?
14: Cross-platform, digital first, virality.
15: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You've got to be real in a world of reels. You've got to be original in a world where everything seems generated.
14: That's it. That's what we're looking for.
15: The best campaigns.
14: The hottest trends.
15: The smartest brand moves on our new show.
14: But wait, what do we call it?
13: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
9: सरसों से सरसों।
16: Let's start with breaking news coming in, and this is in regard

0: शक्ति का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे अपने पूरे जो समाज के लिए समर्पण है वो कांग्रेस पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का चढ़ावा खा गई, चंदा चोरी कर गई, जमीन का घोटाला कर गई, और गौ कसी जो सबसे ज्यादा गौ कसी हो रही है इसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गौ का मांस बेचा जा रहा है पूरे दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश सबसे एक नंबर पे है उसमें, ये उसका पैसा खा रहे हैं। वो क्या बात करेंगे चढ़ावा चोर, ये चढ़ावा चोर लोग हैं जो गेरुआ वस्त्र पहन के पूरा अंदर काला है इनका और ऊपर से गेरुआ वस्त्र ढके हुए हैं योगी जी, ये पूरे भ्रष्ट लोग हैं जो पूरे भगवान राम के मंदिर को या आज भगवान के राम के जन्म स्थान को इन्होंने बदनाम किया है, जहां भगवान राम जन्म लेकर जहां पे आज पैदा हुए उस अयोध्या को कलंकित किया आरएसएस बीजेपी के लोगों ने, भगवान राम का चोरी चोरी कर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, भगवान राम के आदर्श हम चलने वाले हैं, उनके दिखाई हुए मर्यादा का हमेशा पालन किया है कांग्रेस पार्टी ने।
1: सरकार को हम लोगों को जाने देना चाहिए, दर्शन का लाभ हम लोगों को भी मिले, हम लोग भी आकांक्षी हैं और निश्चित तौर से अगर सरकार के मन में कोई खोट नहीं है तो वो हम लोगों को जाने देगी। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका है, अगर बड़ी मछलियों को अगर उनको लगता है कि उनका नाम उजागर हो जाएगा, जैसा बाबा बागेश्वर साहब कह रहे हैं, हम तो उनसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, अपील करेंगे कि लोगों के नाम उजागर करने चाहिए, क्योंकि पाप है जिन लोगों ने किया है और इस पाप का दंड भी मिलेगा।
2: ये किस तरह का प्रशासन ये कर रहा है कि किसी हिंदू को दर्शन करने से वंचित रख रहा है, तो अगर हम दर्शन कर लेंगे तो क्या मतलब ये चंदा चोरी तो रोक नहीं पाए जिसको इनको रोकना था, और किसी को दर्शन करने से ये रोक रहे हैं, ये मतलब बहुत अन्याय मतलब कर रहा है प्रशासन, तो इस तरह की ये नहीं इनको करना चाहिए। राम मंदिर सबका है और सब लोगों को दर्शन करने का अधिकार है, कौन से हिंदू धर्म में लिखा है कि कुछ लोग ही दर्शन कर सकते हैं।
3: इस पार्टी के लोग जब अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने जाते हैं तो हिंदुओं के मनों में आशंका पैदा होती है, उनको लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था, जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, जो राम को मानते नहीं है, तो फिर दर्शन करने का ड्रामा भी उन्हें नहीं करना चाहिए।
4: उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज लॉन्च्ड येट अनदर शार्प अटैक ऑन द ऑपोजिशन पार्टीज, अक्यूजिंग देम ऑफ चेंजिंग देयर स्टांस ऑन मैटर्स ऑफ फेथ एंड हेरिटेज। ही सेड दैट द ऑपोजिशन अपीयर्स अनसेटल्ड बाय द रैपिड डेवलपमेंट्स ऑफ रिलीजियस सेंटर्स लाइक अयोध्या एंड काशी। Akhilesh Yadav, meanwhile, has spoken exclusively to NDTV and said faith of millions of devotees is being trifled with, and added that there is no religion or shame in BJP's dictionary. Further, he attacked BJP, saying they will loot Kashi and Mathura. Also, AIMIM chief OSC has slammed the BJP government and said, and I quote him here, if accused had been Muslims, their houses would have been bulldozed, but no action is being taken against Champat Rai.
5: वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं, अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है।
6: मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों, और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है। और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जांच कर रही है SIT, आपने रिपोर्ट किसको दी है, आपने रिपोर्ट किसको दी है, सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है, SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है, क्या SIT की भी जाँच होगी क्या? जब आप ट्रस्ट के मेम्बर हैं और आप ट्रस्ट की जाँच कर रहे हैं, आप ही ने SIT बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको माफ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें।

0: जो जॉब कैलेंडर का वादा करने वाला सरकार आज 2 लाख नौकरी तो दूर, केवल अपने पार्टी का एटीएम बनकर दिल्ली के दरबार को सजाने का काम यहाँ की सरकार कर रही है। मित्रों, तेलंगाना की जनता के जो अटूट विश्वास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार को मिल रहा है, मैं चाहता हूँ कि तेलंगाना की जनता और आप कार्यकर्ताओं के संघर्ष और परिश्रम के बल पर हम तेलंगाना में भी डबल इंजन की सरकार 2028 में लाने का संकल्प लेंगे। मित्रों,
1: well, with that, it's a wrap of the Southern View. Thanking my colleagues Ashish, Vijay and Ritu for joining us on this broadcast. We'll be back same time tomorrow. Until then, stay tuned to NDTV.

0: friendship was over. He says there was no reason for him to tell his parents about it because Sia said that that friendship was over. She did not even define it. She did not describe it as a relationship. She just said it was a friendship, which was now over. The brother also says that Sia had spent hours planning her pre-wedding shoot and he had no reason to be suspicious of anything. In fact, he says Sia was confused about how to define her friendship with Chetan and said that she had nothing to do with Chetan anymore, that friendship was over, that she wanted now to be with Ketan Agarwal. Listen in to this interview.
1: Sahil, you haven't come in front of the media, but you have called the police on my knowledge, and you have recorded your statement. How long has this statement been and what are you supporting the law?
2: My statement has been 10 to 12 hours. मेरी तरफ से कानून को पूरी सहायता है, कानून को, पुलिस को, जिसको भी
1: तो कभी भारत भी की जनता को आप ये क्यों नहीं बताना चाहते या इस बारे में आप मीडिया के सामने क्यों नहीं बता रहे कि क्या आपको चेतन और सिया के पुलिस का जो आरोप है, पुलिस ने जो थ्योरी बताई है उस हिसाब से और जो हम लोग भी देख रहे हैं कि ये लोग आरोपी है इस हत्याकांड में, क्या आपको इसकी कोई भी जानकारी है? क्या आपने अपने माता पिता को या इनके रिलेशन को लेकर आपने कभी अपने माता पिता को कुछ बताया है?
2: जब सिया ने ही मुझे बोल दिया सर कि मुझे केतन के साथ ही आगे जाना है और चेतन के साथ मुझे कुछ नहीं रखना है, मैं बताकर करता क्या? जब उसने मुझे बोला कि मैं आपकी कसम खाती हूँ कि मैं इसके आगे ना चेतन से बात करूँगी ना कुछ करूँगी, मुझे उसके साथ कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरी लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ। वो घंटों तक, अब प्री वेडिंग शूट की जो बात चल रही है, वो घंटों तक प्री वेडिंग शूट प्लान कर चुकी है केतन के साथ, केतन के साथ, उनके जो फोटोग्राफर्स हैं उनके साथ, सबके साथ। गाने कौन से चाहिए, लोकेशंस कौन सी रहनी चाहिए, वो सब वो दो दो तीन तीन घंटे तक वीडियो कॉल पे बात कर चुकी है। इस चीज़ से मैं क्या समझता सर, मैं बता कर क्या करता, किसको क्या करता?
1: तो पेरेंट्स को कभी बताया नहीं आप?
2: ये बात मैंने पेरेंट्स को कभी नहीं बताई सर।
1: कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे या दोस्ती थी उनकी?
2: दोस्ती ही थी सर। जब उन्होंने भी मुझे जब बोला है तो उन्होंने भी यही बोला कि भैया मुझे मालूम नहीं है ये क्या है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ।
1: मतलब रिलेशनशिप नहीं है?
2: रिलेशनशिप मुझे बताया ही नहीं, उन्होंने बोला कि मैं हम दोनों साथ में रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, वी आर हैप्पी व्हेन वी आर टुगेदर, इट इज़ वेरी अर्ली टू से एनीथिंग, वी माइट गेट एंगेज, वी माइट गेट मैरिड।
1: So it was not a conviction or it was not a confirmation about a relationship.
2: It was confusion, sir.
1: It was a confusion.
2: Yes, sir.
1: It was a state of confusion. कि भाई क्या चल रहा है?
2: Which to which I also said, you are very young at age. It is okay. लोग दोस्ती को प्यार समझ लेते हैं. It is okay. Whatever you decide. अगर आपने मुझे केतन को बोला है कि मुझे केतन के साथ आगे जाना है, it is okay. It will be our secret. मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा।
1: और अगर वो कहती कि चेतन के साथ आगे जाना है
2: तो ये बात हम पेरेंट्स के सामने आगे लेके आते थे, हम उनको बोलते थे, हम ये सगाई तुड़वा देते थे सर।
1: तो आपने किसी को भी रिश्तेदारी में किसी को भी नहीं बताया?
2: किसी को भी नहीं,
1: माँ बाप को भी नहीं कभी? कानून के साथ आप जो परसों गए, कोई ऐसी चीज जो कोई नई चीज हो जो मीडिया में अभी तक नहीं आई?
2: जो स्टेटमेंट मैं आपको आज दे रहा हूँ सर, वही मेरी पुलिस स्टेटमेंट में सेम चीज है।
0: All right, so that was an exclusive interview with Sia's brother Sahil there, who spoke about how he was aware of the friendship between Chetan and Sia, but Sia had said that it was over. Let's go across to Anuj now for more on all these developments. And Anuj, this comes as the police are investigating the matter. Both the accused were even taken to the Lohagarh fort. But about Sia's family, because there have been questions raised about whether they were aware about Chetan and about whether she was being forced, you know, into this marriage. And now the brother is saying that she had ended her friendship and that she had told him that she wants to be with Ketan.
3: Obviously, we are getting, mixed signals here as far as Sia and her family's version is concerned. As far as the source-based information that we had gathered from Pune immediately after this unfortunate incident of June 18, we realized that the family was firstly not aware of this. And then we got to know that

0: tracking the latest in the Ram Mandir donation theft case and the politics first. Congress State Chief Ajay Rai has claimed that the delegation, a Congress delegation which was to visit the Ram Temple today, has been put under house arrest and has been confined to the hotel. Targeting the BJP, he said the Uttar Pradesh government got scared and had him arrested to prevent the delegation from going to Ayodhya. The 9-member delegation comprises State Congress President Ajay Rai, MPs Kishori Lal Sharma, Rakesh Rathore, Ujjwal Raman Singh to visit the temple. Meanwhile, Chief Minister Yogi Adityanath has slammed the Congress over these claims and stated that Congress never believed in Ram's existence.
1: 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है।
2: अब कांग्रेस की बात मैं करना चाहूंगा
3: जी।
2: कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, हम भगवान भक्त हैं, भगवान के इनकी तरफ अधर्मी नहीं है, दिखावटी नहीं है कि भगवान राम का पैसा खा गए, चोरी कर लिए। कांग्रेस दान हमेशा करती रही है, चाहे वो अपनी संपत्ति का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे अपने पूरे जो समाज के लिए समर्पण है वो कांग्रेस पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का चढ़ावा खा गई, चंदा चोरी कर गई, जमीन का घोटाला कर गई और गौकसी, जो सबसे ज्यादा गौकसी हो रही है इसमें उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा गौ का मांस बेचा जा रहा है पूरे दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश सबसे एक नंबर पे है उसमें, ये उसका पैसा खा रहे हैं। वो क्या बात करेंगे चढ़ावा चोर, ये चढ़ावा चोर लोग हैं जो गेरुआ वस्त्र पहन के, पूरा अंदर काला है इनका और ऊपर से गेरुआ वस्त्र ढके हुए हैं योगी जी, ये पूरे भ्रष्ट लोग हैं जो पूरे भगवान राम के मंदिर को, या आज भगवान के राम के जन्म स्थान को इन्होंने बदनाम किया है, जहाँ भगवान राम जन्म लेकर जहाँ पे आज पैदा हुए उस अयोध्या को कलंकित किया आ रहे थे सब बीजेपी के लोगों ने, भगवान राम का चोरी चोरी कर। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, भगवान राम के आदर्श हम चलने वाले हैं, उनके दिखाए हुए मर्यादा का हमेशा पालन किया है कांग्रेस पार्टी ने।
4: सरकार को हम लोगों को जाने देना चाहिए, दर्शन का लाभ हम लोगों को भी मिले, हम लोग भी आकांक्षी हैं और निश्चित तौर से अगर सरकार के मन में कोई खोट नहीं है तो वो हम लोगों को जाने देगी। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका है, अगर बड़ी मछलियों को अगर उनको लगता है कि उनका नाम उजागर हो जाएगा, जैसा बाबा बागेश्वर साहब कह रहे हैं, हम तो उनसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, अपील करेंगे कि लोगों के नाम उजागर करने चाहिए, क्योंकि पाप है जिन लोगों ने किया है और इस पाप का दंड भी मिलेगा।
5: ये किस तरह का प्रशासन ये कर रहा है कि किसी हिंदू को दर्शन करने से वंचित रख रहा है, तो अगर हम दर्शन कर लेंगे तो क्या मतलब, ये चंदा चोरी तो रोक नहीं पाए जिसको इनको रोकना था, और किसी को दर्शन करने से ये रोक रहे हैं, ये मतलब बहुत अन्याय मतलब कर रहा है प्रशासन, तो इस तरह की ये नहीं इनको करना चाहिए। राम मंदिर सबका है और सब लोगों को दर्शन करने का अधिकार है, कौन से हिंदू धर्म में लिखा है कि कुछ लोग ही दर्शन कर सकते हैं।
6: मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट को रोका गया, अजय राय साहब को क्यों रोका गया, वो वहां जाकर जो वहां भ्रष्टाचार हो गया, लूटमार हो गई है, दान पत्र में दान पेटी गई, उस बारे में बात करेंगे, इसलिए राम मंदिर जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, आपको भी राम मंदिर आना चाहिए, हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, उनको भी राम मंदिर जाना चाहिए, हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे, उनको भी जाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी अभी जाकर आए वापस हमारे साथ आ जाएंगे, ये कौन है राम मंदिर, उनकी बात भी जागी रह गया।
7: इस पार्टी के लोग जब अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने जाते हैं तो हिंदुओं के मनों में आशंका पैदा होती है, उनको लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था, जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, जो राम को मानते नहीं हैं, तो फिर दर्शन करने का ड्रामा भी उन्हें नहीं करना चाहिए।
8: भगवान का मंदिर ना बने इस बात की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से किया,

0: और आज चले हैं अयोध्या जी उपद्रव करने, तो प्रशासन ने अच्छा किया, और ज्यादा उपद्रव करेंगे तो जेल भी जाना पड़ेगा। वहां उदंडता और उपद्रव के लिए कोई स्थान अयोध्या जी में नहीं है। और कांग्रेस जैसी घृणित मानसिकता के लिए तो और भी जगह नहीं है, इसलिए ये बेवजह का ड्रामा कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में इनका ड्रामा चलने उलने वाला नहीं है।
1: Let's go across to Ranveer now, who's been tracking all these developments. And first and foremost, Ranveer, this Congress delegation claiming they're under house arrest, they're not being allowed to visit the Ram temple.
2: Yes, of course. Congress leaders with Ajay Rai, four member of parliament and one MLA. They are those who are in Ayodhya, but they claim that police has taken custody. Ajay Rai, who is the president of UP Congress, he visited Ayodhya yesterday evening, and when Ayodhya police got to know that he is in Ayodhya, Ayodhya police requested him to return back to Lucknow, because due to this controversy, the situation is not very favorable, so that these political leader can do politics over this controversy. So Ajay Rai refused to do so, and then police taken him from the hotel to a guest house, and they are house arrest. And also 10 days back, Ajay Rai with some Congress leaders, he visited Ayodhya, he visited Hanumangadi as well as Ram temple, and again after 10 days today they announced that a delegation of 9 leaders, including 4 member of parliament and 1 MLA, Ajay Rai will lead this delegation. And now they are criticizing BJP, because this is a big chance for the opposition to attack Bharatiya Janata Party over Ayodhya issue. Till now, BJP was always attacking the opposition over several issues related to Ram temple, but now the opposition has got chance, and that's why especially Samajwadi Party as well as Congress both are attacking Bharatiya Janata Party, and they are targeting that due to donation theft, BJP is under a scanner and BJP have to reply. And they are raising question that why they are not allowed to visit Ram temple. They are just devotees. But obviously, in a span of 10 days, Congress leaders visited Ayodhya twice. So obviously, the question is why opposition is trying to show that they are the devotees and they are visiting Ayodhya twice in 10 days.
1: All right, Ranveer, thanks so much for joining us with those details. So the political showdown really intensifying over the Ram Mandir theft probe, and beyond the Congress delegation being stopped, UP Chief Minister Yogi Adityanath also launched another sharp attack on opposition parties, accusing them of changing their stance on matters of faith and heritage. He said the opposition appears unsettled by rapid developments of religious centers like Ayodhya and Kashi. Meanwhile, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav, speaking exclusively to NDTV, said the faith of millions of devotees is being trifled with, and added that there is no religion or shame in the BJP's dictionary. Further, he attacked the BJP, saying that they will loot Kashi and Mathura as well. Also, AIMIM chief Owaisi has slammed the BJP government, saying that if the accused had been Muslims, their houses would have been bulldozed by now, but no action is being taken against the former trust head Champat Rai.
3: Wo Congress jo 2017 ke pehle Ram ke astitv ko hi nakar chuki thi, Shri Krishna ke astitv ko hi nakar chuki thi, aaj wo bhi kehti hai कि राम तो सबके हैं, अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है।
4: मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों। और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है। और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जाँच कर रही है SIT, आपने रिपोर्ट किसको दी है, आपने रिपोर्ट किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है, एसआईटी किसने बनाई और जांच किसको दी गई है? क्या एसआईटी की भी जांच होगी क्या? जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने एसआईटी बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको माफ़ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें।
5: अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया, तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते। केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपा का भी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप? किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद, शायद कल पुलिस कस्टडी ले ले।
6: कार्रवाई तो उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो बड़े लोग हैं। यहाँ छोटे लोगों को ये बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? और मैं समझता हूँ ये दूध का दूध पानी का पानी जब होगा, जब एक विश्वसनीय संस्था से जो पारदर्शी हो उसकी जांच कराई जाए। भ्रष्टाचार का मामला, इसमें कौन सी राजनीति है? कायिक राजनीति है। हम चाहते हैं गुणदोष के आधार पर कार्रवाई हो। जो लोग इसमें शामिल हैं, वहां की दौलत को चुराने में जो लोग शामिल, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं समझता इसमें कोई राजनीति है।
7: सरकार को छूटती है कि अगर नीचे छोटे मोटे लोगों को पकड़ के आए और जब हम इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे, तो वो नहीं होने वाला। इसमें तो जो है, जो बड़े बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि इतनी लंबी चोरी है सैकड़ों हजारों करोड़ की, कि वो थोड़ा कर सकते हैं खाली, जब तक सहमति ना हो। तो इसको लेके जो है बहुत दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है ये मामला, और बहुत गंभीर मामला होता जा रहा है। ऐसी सार्थक जाँच होनी चाहिए और ऐसे लोग पकड़े जाने चाहिए जो जो है, जो बड़े लोग इसमें शामिल हैं, उन सबको पकड़ने का प्रयास होना चाहिए।
8: दैट दिस गवर्नमेंट इज क्लीन, पीपल हु बिलीव्ड दैट दिस पीपल विल नॉट इंडल्ज इन करप्शन इन द नेम ऑफ गॉड हैव बीन लेट डाउन। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाज हु स्लोगन, मिस्टर मोदी स्लोगन, एंड वेयर इज वेरी नो मन की बात ऑन दिस।
1: All right, so the opposition claiming that it's only the small fish so far who've been arrested. Remember, 8 have been arrested, but saying that the bigger names are being let go. Now, as far as the investigation into the alleged Ram Temple donation theft goes, it is widening. The scope is widening. The special investigating team is probing at the temple theft and will now question 140 others, including trust members, priests and bank staff. Now, according to sources, a former trust general secretary, Champat Rai, who's really been in the firing line in a sense, people really questioning his role in all of this. He recorded his statement before the police in which he denied any role in the alleged theft. Sources say he maintained that he acted immediately after learning about the missing offerings and claims that he ordered action against the accused. Also, the main accused, Lovekush, is under a scanner after investigators found he allegedly transferred cash into his wife's bank account. The investigation has also raised serious questions over the hiring of outsourced staff. And according to sources, Ayodhya police have filed an application to interrogate some of the accused in jail, but the court has not granted permission yet. All right, with that, we'll slip into a short break. More news and updates coming up on the other side. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आग प्योर मसाला।
10: Literally go

0: अच्छा, ये बात थी।
1: हाँ जी
0: और फैक्ट चेक में कि भाई सिया बहुत ज़्यादा मतलब पार्टीज़ में शराब पीना और ये सब ऐसी चीज़ें सामने आ रही है, हालांकि मैं इस चीज़ को हम लोग इसको अभी भी वेरीफाई कर रहे हैं, सत्य क्या, क्योंकि एक माँ के तौर पे आपको तो पता ही होगा कि अभी जैसे उसने पुलिस में भी ऐसा आ रहा है कि भाई पुलिस स्टेशन में भी जहाँ वो कस्टडी में है तो सिया ने वहाँ पर भी बियर मांगी है।
1: अभी कल मैं कस्टडी इस स्टेटमेंट के लिए गई थी तो वहाँ मुझे पुलिस ने
0: अब कैमरा मैन
1: बताया
0: को
1: है,
0: देख क्या
1: पुलिस ने मुझे बताया है कि आपकी बेटी ने कोई हमसे एक बियर शराब नहीं मांगी है, ये सब मीडिया पे अफवाह आ रही है।
0: नहीं, मीडिया अपने आप नहीं बताती है, कुछ पार्टीज़ के फोटो वीडियो भी। तो कभी आपको लगता है कि कभी सिया ऐसे बियर और ऐसा पार्टीज इस टाइप
1: नहीं
0: की?
1: नहीं पार्टीज वगैरह कुछ ऐसे बियर पी ये कुछ भी नहीं है।
0: अच्छा, और एक चीज़ आ रहा है कि सिया 12वीं पास नहीं थी, मैं ये भी फैक्ट चेक करना चाहूँगा,
1: हाँ
0: उसकी पढ़ाई
1: जी
0: को लेके क्या स्टेटस है?
1: हाँ, उसकी पढ़ाई बहुत कम थी, 12वीं पास नहीं थी, ये मैंने सामने बता दिया था उनके माजी को, उनकी फैमिली को, कि मेरी सिया ने पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसने पढ़ाई बहुत कम
0: कैमरे
1: की
0: में
1: है
0: अगर
1: करके
0: आप,
1: है,
0: और कल आप
1: इसीलिए
0: जा
1: उसने केक अपना केक वगैरह का चालू किया है।
0: तो केक का बिजनेस करती थी, केक बना
1: नहीं,
0: के।
1: होम
0: अच्छा,
1: घर से
0: घर
1: करती
0: से
1: थी,
0: ऑर्डर।
1: घर से
2: डिलीवरीज में अगर किसी का फोन आ जाता था कि आज मेरा बर्थडे है, मेरी
0: अच्छा
2: बेटी
0: कई बार
2: का
0: घर
2: बर्थडे,
1: घर से ही
2: तो
1: करती थी।
2: सिया प्लीज इतना एक केक बना देंगी क्या, तू जो भी रहेगा बता देना, उतना डिलीवरी भी करा देना और प्लीज बना देना, तू अच्छा केक बनाती है करके। तो बस यानी कि रिलेशनशिप में, यानी कि कज़न ब्रदर हो गए, कज़न सिस्टर्स हो गए या उनके फ्रेंड्स वगैरह हो गए, तो उनका फ़ोन आता था तो वो बना देती थी, उसका भी टाइम पास हो जाता था और कुछ दो चार पैसे का उसका यानी कि खुद का खर्चा भी चल जाता
0: मैं
2: था।
0: वापस आप दोनों से एक बात पूछ रहा हूँ जो पूरी दुनिया जानना चाह रही है, क्या सिया ने चेतन के साथ अपने रिलेशनशिप को लेके पुलिस ने अरेस्ट करने तक कभी आपको बताया गया या कभी आपकी उस विषय में बात हुई?
1: नहीं,
2: नहीं,
1: हाँ
2: हमें
1: हमारी
2: तो कभी
1: तो
2: नहीं कुछ पता चला इसके बारे में। अगर इसके बारे में अगर पता चलता तो यानी कि कुछ ना कुछ तो मैं एक्शन लेता था, मैं सामने वाले से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता था कि लाला जी ऐसी ऐसी थोड़ी बात है, ये बात सामने आई है करके, और इसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा कुछ यानी कि पॉइंट्स हैं तो थोड़ा किस तरह से बात करनी चाहिए, कैसा नहीं, ये रिश्ता यानी कि
0: संधि
2: तू
0: से बात होने वाले
2: संधि
0: संधि से
2: से
0: बात
2: होने
0: करते।
2: वाले संधि से ये बात करता था मैं, तो शायद कुछ रास्ता निकल जाता था, कुछ हल निकल जाता था, टॉपिक ख़त्म हो जाता था कि
0: ठीक है,
2: ये।
0: आपको नहीं, लेकिन बच्ची माँ के क्लोज थी ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा सुनने में भी आया, तो आपको भी नहीं?
1: नहीं, मुझे कभी बताया नहीं उसने कि मैं केतन से प्यार नहीं करती या मुझे शादी नहीं करनी है
0: या और कोई
1: करके,
0: लड़का मेरे लाइफ में है,
1: नहीं उसने कभी नहीं बताया।
0: चेतन
1: अगर
0: मेरे
1: वो
0: लाइफ में
1: बताती
0: है
1: थी मुझे
0: ये
1: तो
0: नहीं
1: मैं
0: बताती।
1: आगे में सामने ये प्रस्ताव रखती थी उनको कि अभी बच्चों में मन मुटाव हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या है क्या नहीं है।
0: वापिस मैंने एक परसों आपसे सवाल पूछा था पुलिस स्टेशन में आपके स्टेटमेंट के पहले, मैं वापस वही सवाल पूछ रहा हूँ। कल अगर अदालत में, क्योंकि आज की तारीख में वो आरोपी है हम सभी जानते हैं।

0: to the Lohagarh fort, and in fact they were over there. The police did recreate the crime in a sense. They looked at how Chetan Chaudhary walked, and they're going to compare that with CCTV. But even as this probe widens, after their questioning, Siya Goyal's parents have come out with their statements. In an interview, Siya's parents have claimed that they knew Chetan as Siya's friends, but that they were not in a relationship. That's not something they were aware about. Also, Siya's brother Sahil has broken his silence, and he says that Siya had told him that she only wanted to be with Ketan and that she was confused about her relationship with Chetan. He says that she did not really define it. She said it was a friendship. The police, as we said, took the accused Chetan Chaudhary to Lohagarh Fort to recreate the crime scene. Earlier, Siya was taken to the same spot as well.
1: Ketan Agarwal prakaran mein kal आरोपी सिया गोयल के माता पिता को पुलिस ने स्टेटमेंट के लिए बुलाया था. मेरे ख्याल में 9-9.5 घंटे तहकीकात हुई है.
2: हाँ जी.
1: आपने पूरा कानून को सहयोग दिया.
2: हाँ जी, पूरा सहयोग दिया और आगे भी दूंगी.
3: 12 घंटे तक चली है
1: जी. अब इसमें मैं आपसे कुछ और चीज़ें इस विषय में पूछना चाहता हूँ. काफ़ी कुछ चीज़ें अलग अलग मीडिया की ओर से, लोगों की ओर से कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हमने न्यूज़ डॉट्स ने भी ब्रेक की है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे भी इस पूरे स्टेटमेंट के बाद जानना चाह रहा हूँ कि आप कहते आइए कि भाई सिया और चेतन के रिश्ते का आपको आइडिया नहीं थे, लेकिन अब पब्लिक में उनके फोटोज, उनके दोस्ती के आ रहे हैं, तो क्या सिया चेतन दोस्त थे ये आपको कभी पता नहीं था? मैं फैक्ट चेक चाह रहा हूँ. व्यूअर्स, हमारा पर्पस है फैक्ट चेक पब्लिक के पास पहुँचे. क्या ये दोनों दोस्त थे, क्या आपको जानकारी थी?
2: दोस्त थे, वो भी जब मार्के एड की मैच थी उस टाइम तक जो दोस्त थे. बाद में जब बच्चे की सगाई होने के बाद मुझे नहीं लगा कि सिया कभी दोस्त बनी है या उसने कुछ, उनका दोनों का ऐसे कुछ चल रहा है.
1: रिलेशनशिप वाला नहीं था.
2: अगर बाय चांस रिलेशनशिप रहता था तो वो केतन से इतना प्यार नहीं करती थी, या केतन के फ़ोन नहीं उठाती थी, या केतन के साथ कभी उनको लगा कि सिया प्यार नहीं कर रही, तो वो मुझे पूछ सकते थे कि सिया केतन के फ़ोन नहीं उठाती या केतन से नहीं मिल पा रही है, कहीं जा नहीं रही है. ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं 4 महीने में.
1: तो मैडम, ये अगर आपकी बात को देखा जाए तो साथ में फिर सवाल उठता है कि वो एक क्रिकेट मैच वाला फ़ोटो आ रहा है मार्केट यार्ड का जो आपने देखा, लेकिन मेहरामगढ़ फोर्ट में चेतन सिया गए थे, हमारे सूत्रों के हिसाब से ये भी पता चल रहा है, ऐसे कुछ फ़ोटो मैंने खुद देखे हुए हैं.
2: वो किसी फ्रेंड की शादी में गए थे और वहाँ मिले थे वो लोग,
1: मतलब
2: उदयपुर में. हाँ,
1: रिलेशनशिप में थे?
2: नहीं, रिलेशनशिप में नहीं थे, फ्रेंड की शादी में गए थे और फ्रेंड की शादी अटेंड किया.
1: क्या ये आप लोगों को या केतन को पता था इस चीज़ का?
2: केतन को उसने बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है चेतन नाम का लड़का.
1: अच्छा, ये बात थी.
2: हाँ जी.
1: और फैक्ट चेक में कि भाई सिया बहुत ज़्यादा, मतलब पार्टीज़ में शराब पीना और ये सब ऐसी चीज़ें सामने आ रही है, हालांकि मैं इस चीज़ को, हम लोग इसको अभी वेरीफाई कर रहे हैं, सत्य क्या है? क्योंकि एक माँ के तौर पे आपको तो पता ही होगा कि अभी जैसे उसने पुलिस में भी ऐसा आ रहा है कि भाई पुलिस स्टेशन में भी जहाँ वो कस्टडी में है तो सिया ने वहाँ पर भी बियर मांगी है.
2: अभी कल मैं कस्टडी इस स्टेटमेंट के लिए गई थी तो वहाँ मुझे पुलिस ने बताया है, पुलिस ने मुझे बताया है कि आपकी बेटी ने कोई हमसे एक बियर शराब नहीं मांगी है, ये सब मीडिया पे अफवाह आ रही है.
1: नहीं, मीडिया अपने आप नहीं बताती है, कुछ पार्टीज़ के फ़ोटो वीडियो भी. तो कभी आपको लगता है कि कभी सिया ऐसे बियर और ऐसा पार्टीज़ इस टाइप की?
2: नहीं, पार्टीज़ वगैरह कुछ ऐसे बियर पी ये कुछ भी नहीं है.
1: अच्छा, और एक चीज़ आ रहा है कि सिया 12वीं पास नहीं थी, मैं ये भी फैक्ट चेक करना चाहूँगा.
2: हाँ,
1: उसकी पढ़ाई को लेकर क्या स्टेटस है?
2: हाँ, उसकी पढ़ाई बहुत कम थी, 12वीं पास नहीं थी, ये मैंने सामने बता दिया था उनके माँ जी को, उनकी फैमिली को, कि मेरी सिया ने पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसने पढ़ाई बहुत कम की है करके.
1: और कल आप
2: इसीलिए उसने अपना केक वगैरह का चालू किया है.
1: तो केक का बिजनेस करती थी? केक बनाती
2: होम?
1: अच्छा,
2: घर से करती थी.
1: ऑर्डर
2: घर से?
3: बीच में अगर किसी का फोन आ जाता था कि आज मेरा बर्थडे है,
1: कई बार
2: घर से ही करती थी.
3: प्लीज इतना एक केक बना देंगी क्या, तू जो भी रहेगा बता देना, उतना डिलीवरी भी करा देना और प्लीज़ बना देना, तू अच्छा केक बनाती है करके. तो बस यानी कि रिलेशनशिप में, यानी कि कज़न ब्रदर हो गए, कज़न सिस्टर्स हो गए या उनके फ्रेंड्स वगैरह हो गए, तो उनका फ़ोन आता था तो वो बना देती थी, उसका भी टाइम पास हो जाता था और कुछ 2-4 पैसे का उसका यानी कि खुद का खर्चा भी चल जाता.
1: मैं वापस आप दोनों से एक बात पूछ रहा हूँ जो पूरी दुनिया जानना चाह रही है, क्या सिया ने चेतन के साथ।

0: अपने रिलेशनशिप को लेके पुलिस ने अरेस्ट करने तक कभी आपको बताया या कभी आपकी उस विषय में बात हुई?
1: नहीं, हमारी
2: तो कभी नहीं कुछ पता चला इसके बारे में। अगर इसके बारे में अगर पता चलता तो यानी कि कुछ ना कुछ तो मैं एक्शन लेता था, मैं सामने वाले से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता था कि लाला जी ऐसी ऐसी थोड़ी बात है, ये बात सामने आई ये करके, और इसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा कुछ यानी कि पॉइंट्स हैं तो थोड़ा किस तरह से बात करनी चाहिए, कैसा नहीं ये रिश्ता, यानी कि
0: संधि से बात होने वाले संधि से
2: होने वाले संधि से ये बात करता था मैं, तो शायद कुछ रास्ता निकल जाता था, कुछ हल निकल जाता था, टॉपिक ख़त्म हो जाता था कि ये
0: आपको नहीं, लेकिन बच्ची माँ के क्लोज थी ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा सुनने में भी आया, तो आपको भी नहीं?
1: नहीं, मुझे कभी बताया नहीं उसने कि मैं केतन से प्यार नहीं करती या मुझे शादी नहीं करनी है
0: या और कोई लड़का मेरे लाइफ में है।
1: नहीं, उसने कभी नहीं बताया। अगर वो बताती थी मुझे तो मैं आगे में सामने ये प्रस्ताव रखती थी उनको कि अभी बच्चों में मन मुटाव हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या है क्या नहीं है।
0: वापिस मैंने एक परसों आपसे सवाल पूछा था पुलिस स्टेशन में आपके स्टेटमेंट के पहले, मैं वापस वही सवाल पूछ रहा हूँ। कल अगर अदालत में, क्योंकि आज की तारीख में वो आरोपी है, हम सभी जानते हैं, हमने जो दस्तावेज देखे हमारे हिसाब से भी वो आरोपी तो है, कल अगर वो दोषी हो जाती है अदालत में, एक माँ के तौर पर, एक हिंदुस्तानी नागरिक के तौर पर आप क्या कहेंगे?
1: मैं सबसे यही कहूँगी, अगर मेरी बेटी दोषी पाई जाती हो तो इस केस को जल्द से जल्द खत्म करके उसको फांसी की सजा दे दी जाए।
0: साहिल, आप अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन आप परसों मेरी जानकारी के हिसाब से आपको पुलिस ने बुलाया था, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, कितने देर ये स्टेटमेंट चला और क्या आप कानून को सहयोग कर रहे हो?
3: मेरा स्टेटमेंट 10 से 12 घंटे चला। मेरी तरफ से कानून को पूरी सहायता है, कानून को, पुलिस को, जिसको भी।
0: तो फिर भारत की जनता को आप ये क्यों नहीं बताना चाहते या इस बारे में आप मीडिया के सामने क्यों नहीं बता रहे कि क्या आपको चेतन और सिया के पुलिस का जो आरोप है, पुलिस ने जो थ्योरी बताई है उस हिसाब से और जो हम लोग भी देख रहे हैं कि ये लोग आरोपी है इस हत्याकांड में, क्या आपको इसकी कोई भी जानकारी है? क्या आपने अपने माता पिता को या इनके रिलेशन को लेकर आपने कभी अपने माता पिता को कुछ बताया है?
3: जब सिया ने ही मुझे बोल दिया सर कि मुझे केतन के साथ ही आगे जाना है और चेतन के साथ मुझे कुछ नहीं रखना है, मैं बताकर करता क्या? जब उसने मुझे बोला कि मैं आपकी कसम खाती हूँ कि मैं इसके आगे ना चेतन से बात करूँगी ना कुछ करूँगी, मुझे उसके साथ कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरी लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ। वो घंटों तक, अब प्री वेडिंग शूट की जो बात चल रही है, वो घंटों तक प्री वेडिंग शूट प्लान कर चुकी है केतन के साथ, उनके जो फोटोग्राफर्स हैं उनके साथ, सबके साथ, गाने कौन से चाहिए, लोकेशंस कौन सी रहनी चाहिए, वो सब वो दो दो तीन तीन घंटे तक वीडियो कॉल पर बात कर चुकी है। इस चीज़ से मैं क्या समझता सर, मैं बताकर क्या करता, किसको क्या करता?
0: तो पेरेंट्स को कभी बताया नहीं आप?
3: ये बात मैंने पेरेंट्स को कभी नहीं बताई सर।
0: कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे या दोस्ती थी उनकी?
3: दोस्ती ही थी सर। जब उन्होंने भी मुझे जब बोला है तो उन्होंने भी यही बोला कि भैया मुझे मालूम नहीं है ये क्या है, मैं कन्फ्यूज्ड हूँ।
0: मतलब रिलेशनशिप नहीं है?
3: रिलेशनशिप मुझे बताया ही नहीं, उन्होंने बोला कि हम दोनों साथ में रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, वी आर हैप्पी व्हेन वी आर टुगेदर, इट इज़ वेरी अर्ली टू से एनीथिंग, वी माइट गेट एंगेज, वी माइट गेट मैरिड।
0: So it was not a conviction or it was not a confirmation about a relationship.
3: It was confusion, sir.
0: It was a confusion.
3: Yes, sir.
0: It was a state of confusion. कि भाई क्या चल रहा है?
3: Which to which I also said, you are very young at age. It is okay. लोग दोस्ती को प्यार समझ लेते हैं. It is okay. Whatever you decide. अगर आपने मुझे केतन को बोला है कि मुझे केतन के साथ आगे जाना है, it is okay. It will be our secret. मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा.
0: और अगर वो कहती कि चेतन के साथ आगे जाना है
3: तो ये बात हम पेरेंट्स के सामने आगे लेके आते थे, हम उनको बोलते थे, हम ये सगाई तुड़वा देते थे सर।
0: तो आपने किसी को भी रिश्तेदारी में किसी को भी नहीं बताया?
3: किसी को भी नहीं,
0: माँ बाप को भी नहीं कभी? कानून के साथ आप जो परसों गए, कोई ऐसी चीज़ जो कोई नई चीज़ हो जो मीडिया में अभी तक नहीं आई?
3: जो स्टेटमेंट मैं आपको आज दे रहा हूँ सर, वही मेरी पुलिस स्टेटमेंट में सेम चीज़ है।
4: All right, so those were the parents as well as the brother of Sia Goyal speaking in this exclusive interview where they spoke about how they were aware of Chetan Chaudhary but said that Sia had said he was just a friend and that the relationship was over. In fact, the investigation into Ketan Agarwal's murder has uncovered also what the police believe to be a chilling digital trail. Investigators say the accused researched murder methods on Google and YouTube before allegedly executing the plan at the Lohagarh Fort. Police now say the victim's fiance, Sia Goyal, knew in advance the exact location from where Ketan was allegedly going to be pushed.
5: An extensive internet search secret gestures and a premeditated plot to kill. The Ketan Agarwal murder investigation has revealed stunning details. Police claim the accused extensively searched Google and YouTube for different methods of murder before allegedly finalizing a plan to push Ketan off Lohgarh Fort. Investigators say the online searches included questions about whether a fall from a height would be fatal and which method of murder would carry the least risk of detection. Police believe these searches were part of the alleged planning leading up to the crime. According to investigator C.R. Goyal, held a meeting before the incident. It was during this meeting, police claim, that C.R. was allegedly told about the exact location at Lohgarh Fort where Ketan would be taken. Police allege C.R. knew precisely where she had to stand and from which direction Ketan would approach before allegedly pushing Ketan into the valley. Investigators believe this points to prior planning rather than a spontaneous act. At the time of the crime, a secret gesture was also agreed upon between Sia and Ketan to push Ketan into the deep ravine. Sources say that Sia was to sit down in front of Ketan, either to drink water or to tie her shoelaces, which was Chetan's final signal to push Ketan. The deliberate reason behind Sia's sit-down gesture was to prevent Ketan from grabbing her to save himself while falling. Digital forensic experts are now examining the mobile phone seized from the accused. Police are attempting to recover Google and YouTube search histories, deleted chats, and any messages that may refer to the alleged murder plan or the specific location at Lohgarh Fort. With Sujata Dwivedi, NDTV Bureau Report.
4: All right, now some breaking news coming in, a big political development. Congress leader from Tamil Nadu, Manikam Tagore, has pitched for Rahul Gandhi to be the prime ministerial face of the Congress party. He says this is the way we can counter Narendra Modi. He also says Narendra Modi ignores Tamil Nadu, and if we pitch Rahul Gandhi as the prime ministerial face, this will help in elections. He says at least as far as the Congress in Tamil Nadu goes, they are going to push for Rahul Gandhi. He says it's for India bloc leaders to decide who will be the prime ministerial face. But as far as Congress in Tamil Nadu is concerned, it is Rahul Gandhi all the way. Take a look at this, at the comments that he made.
6: For Congress party, we want him to be the prime minister candidate. We are not speaking about any alliance partners here. Yes. We are saying that we want Congress party should have Tamil Nadu Congress face will be Mr. Rahul Gandhi as the Prime Minister candidate.
7: India bloc wise?
6: That is India leaders to decide. For us, Tamil Nadu Congress believes that Rahul Gandhi is our face because Tamil Nadu's politics has changed and we need a face to go to people. We had seen that every party which is having a face, faceless elections we are not able to win now. We need a face. That is a Mr. Modi. We should be having Rahul Gandhi, and Rahul Gandhi is the leader who should be as the Prime Minister candidate. Then only Rahul Gandhi's personal popularity in every survey shows that 60+ percentage of points he gets it, and where Mr. Modi scores around 30 to 35 percentage points. Therefore, it's a very clear edge for Rahul Gandhi in Tamil Nadu. We should utilize that to expand Congress party in Tamil Nadu.
4: All right, we're now joined on the phone line by BJP spokesperson Shehzad Poonawalla. Shehzad Poonawalla, your response to this pitch made by Manikam Tagore, and he says this is the only way to end discrimination against Tamil Nadu by Prime Minister Modi.
8: Gargi, there is absolutely no tax on daydreaming. Mungeri Lal and Manikam Tagore ke haseen sapne pe koi tax nahi hai. So let them daydream. But see, PM is not made by Manikam Tagore's fantasy. It is made by people's will. And people's will three times over 99 elections has shown that they don't want Rahul to become PM. But I have my full faith and good hope for Mr. Manikam Tagore. He can keep up his psychophancy. Maybe in 2050 they can make Rahul PM. But having said that, forget everybody else. Is DMK willing to now support Rahul Gandhi? Is Samajwadi Party willing to support Rahul Gandhi? Is TMC willing to support? Is UBT Sena willing to support? So na Janmat hai, na Sangat hai, na Janpat hai. Ye keval ye, they are doing badbad. Let them do badbad. There's no problem. It is their democratic right. They can fantasize all the time.
4: All right, we'll leave it there. Thanks so much for speaking to us. Shehzad Poonawala saying these are fantasies by the Congress.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
5: 1933। सरसों से सरसों
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा
8: सबका राजा आके और मसाला।
9: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV Newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: 1933.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्द्र मसाला।
4: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: Come back to you shortly. Let's also tell our viewers about all that has happened so far as the probe has widened in the murder case of Ketan Agarwal by his fiancée Sia and her boyfriend Chetan Chaudhary. Now, after their questioning, Sia Goyal's parents came out with their statements. Sia's parents have now claimed that they knew Chetan as Sia's friend and that they were not in any kind of a relationship. Sia's brother has also broken his silence. Her brother is claiming that Sia had told him that she only wanted to be with Ketan, that's her fiancé of course, and that she was confused about her relationship with Chetan. Police also took accused Chetan Chaudhary to Lohagarh Fort short while ago to recreate the crime scene. Earlier, Sia was also taken to the crime spot.
1: Ketan Agarwal prakaran mein kal आरोपी सिया गोयल के माता पिता को पुलिस ने स्टेटमेंट के लिए बुलाया था. मेरे ख्याल में नौ साढ़े नौ घंटे तहकीकात हुई है.
2: हाँ जी.
1: आपने पूरा कानून को सहयोग दिया.
2: हाँ जी, पूरा सहयोग दिया और आगे भी दूंगी.
3: 12 घंटे तक चली है
1: जी. अब इसमें मैं आपसे कुछ और चीज़ें इस विषय में पूछना चाहता हूँ. काफ़ी कुछ चीज़ें अलग अलग मीडिया की ओर से, लोगों की ओर से कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हमने न्यूज़ जॉन्स ने भी ब्रेक की है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे भी इस पूरे स्टेटमेंट के बाद जानना चाह रहा हूँ कि आप कहते आइए कि भाई सिया और चेतन के रिश्ते का आपको आइडिया नहीं थे, लेकिन अब पब्लिक में उनके फोटोज, उनके दोस्ती के आ रहे हैं, तो क्या सिया चेतन दोस्त थे ये आपको कभी पता नहीं था? मैं फैक्ट चेक चाह रहा हूँ व्यूअर्स, हमारा पर्पस है फैक्ट चेक पब्लिक के पास पहुँचे. क्या ये दोनों दोस्त थे, क्या आपको जानकारी थी?
2: दोस्त थे, वो भी जब मार्केट की मैच थी उस टाइम तक जो दोस्त थे. बाद में जब बच्ची की सगाई होने के बाद मुझे नहीं लगा कि सिया कभी दोस्त बनी है या उसने कुछ, उनका दोनों का ऐसे कुछ चल रहा है.
1: रिलेशनशिप वाला नहीं,
2: रिलेशनशिप वाला नहीं था. अगर बाय चांस रिलेशनशिप रहता था तो वो केतन से इतना प्यार नहीं करती थी या केतन के फ़ोन नहीं उठाती थी या केतन के साथ कभी आप उनको लगा कि वो सिया प्यार नहीं कर रही, तो वो मुझे पूछ सकते थे कि सिया केतन के फ़ोन नहीं उठाती या केतन से नहीं मिल पा रही है, कहीं जा नहीं रही है. ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं 4 महीने में.
1: तो मैडम, ये अगर आपकी बात को देखा जाए तो साथ में फिर सवाल उठता है कि वो एक क्रिकेट मैच वाला फोटो आ रहा है मार्केट यार्ड का जो आपने देखा, लेकिन मेहरामगढ़ फोर्ट में चेतन सिया गए थे, हमारे सूत्रों के हिसाब से ये भी पता चल रहा है, ऐसे कुछ फोटो मैंने खुद देखे हुए हैं.
2: वो किसी फ्रेंड की शादी में गए थे और वहाँ मिले थे वो लोग,
1: मतलब
2: उदयपुर में. हाँ,
1: रिलेशनशिप में थे?
2: नहीं, रिलेशनशिप में नहीं थे, फ्रेंड की शादी में गए थे और फ्रेंड की शादी अटेंड किया.
1: क्या ये आप लोगों को या केतन को पता था इस चीज़ का?
2: केतन को उसने बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है चेतन नाम का लड़का.
1: अच्छा, ये बात थी.
2: हाँ जी.
1: और फैक्ट चेक में कि भाई सिया बहुत ज़्यादा, मतलब पार्टीज़ में शराब पीना और ये सब, ऐसी चीज़ें सामने आ रही है, हालांकि मैं इस चीज़ को, हम लोग इसको अभी भी वेरीफाई कर रहे हैं, सत्य क्या, क्योंकि एक माँ के तौर पे आपको तो पता ही होगा कि अभी जैसे उसने पुलिस में भी ऐसा आ रहा है कि भाई पुलिस स्टेशन में भी जहाँ वो कस्टडी में है तो सिया ने वहाँ पर भी बियर मांगी है.
2: अभी कल मैं कस्टडी इस स्टेटमेंट के लिए गई थी तो वहाँ मुझे पुलिस ने बताया है, पुलिस ने मुझे बताया है कि आपकी बेटी ने कोई हमसे एक बियर शराब नहीं मांगी है, ये सब मीडिया पे अफवाह आ रही है.
1: नहीं, मीडिया अपने आप नहीं बताती है, कुछ पार्टीज़ के फोटो वीडियो भी. तो कभी आपको लगता है कि कभी सिया ऐसे बियर और ऐसा पार्टीज इस टाइप की?
2: नहीं, पार्टीज वगैरह कुछ ऐसे बियर पी, ये कुछ भी नहीं है.
1: अच्छा, और एक चीज़ आ रहा है कि सिया 12वीं पास नहीं थी, मैं ये भी फैक्ट चेक करना चाहूँगा.
2: हाँ,
1: उसकी पढ़ाई को लेकर क्या स्टेटस है?
2: हाँ, उसकी पढ़ाई बहुत कम थी, 12वीं पास नहीं थी, ये मैंने सामने बता दिया था उनके माँ जी को, उनकी फैमिली को, कि मेरी सिया ने पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसने पढ़ाई बहुत कम की है करके.
1: और कल आप
2: इसीलिए उसने अपना केक वगैरह का चालू किया है.
1: तो केक का बिजनेस करती थी, केक बना के?
2: होम.
1: अच्छा,
2: घर से करती थी,
1: ऑर्डर
2: घर से.
3: में अगर किसी का फोन आ जाता था कि आज मेरा बर्थडे है, मेरी,
1: कई बार
2: घर से ही करती थी.
3: प्लीज इतना एक केक बना देंगी क्या, तू जो भी रहेगा बता देना, उतना डिलीवरी भी करा देना और प्लीज़ बना देना, तू अच्छा केक बनाती है करके. तो बस यानी कि रिलेशनशिप में, यानी कि कज़न ब्रदर हो गए, कज़न सिस्टर्स हो गए या उनके फ्रेंड्स वगैरह हो गए, तो उनका फ़ोन आता था तो वो बना देती थी, उसका भी टाइम पास हो जाता था और कुछ 2-4 पैसे का उसका यानी कि खुद का खर्चा भी चल जाता.
1: मैं वापस आप दोनों से एक बात पूछ रहा हूँ जो पूरी दुनिया जानना चाह रही है, क्या सिया ने चेतन के साथ अपने रिलेशनशिप को लेके पुलिस ने अरेस्ट करने तक कभी आपको बताया या कभी आपकी उस विषय में बात हुई?
2: नहीं, हमारी
3: तो कभी नहीं कुछ पता चला इसके बारे में। अगर इसके बारे में अगर पता चलता तो यानी कि कुछ ना कुछ तो मैं एक्शन लेता था, मैं सामने वाले से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता था कि लाला जी ऐसी ऐसी थोड़ी बात है, ये बात सामने आई है करके। और इसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा कुछ यानी कि पॉइंट्स हैं तो थोड़ा किस तरह से बात करनी चाहिए, कैसा नहीं ये रिश्ता, यानी कि
1: संधि से बात होने वाले संधि से
3: होने वाले संधि से ये बात करता था मैं, तो शायद कुछ रास्ता निकल जाता था, कुछ हल निकल जाता था, टॉपिक खत्म हो जाता था कि ये
1: आपको नहीं लेकिन बच्ची माँ के क्लोज थी ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा सुनने में भी आया, तो आपको भी नहीं?
2: नहीं, मुझे कभी बताया नहीं उसने कि मैं केतन से प्यार नहीं करती या मुझे शादी नहीं करनी है
1: या और कोई लड़का मेरे लाइफ में है।
2: नहीं, उसने कभी नहीं बताया। अगर वो बताती थी मुझे तो मैं आगे में सामने ये प्रस्ताव रखती थी उनको कि अभी बच्चों में मन मुटाव हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या है क्या नहीं है।
1: वापस मैंने एक परसों आपसे सवाल पूछा था पुलिस स्टेशन में आपके स्टेटमेंट के पहले, मैं वापस वही सवाल पूछ रहा हूँ। कल अगर अदालत में, क्योंकि आज की तारीख में वो आरोपी है हम सभी जानते हैं, हमने जो दस्तावेज देखे हमारे हिसाब से भी वो आरोपी तो है, कल अगर वो दोषी हो जाती है अदालत में, एक माँ के तौर पे, एक हिंदुस्तानी नागरिक के तौर पे आप क्या कहेंगे?
2: मैं सबसे यही कहूँगी अगर मेरी बेटी दोषी पाई जाती हो तो इस केस को जल्द से जल्द ख़त्म करके उसको फांसी की सजा दे दी जाए।
1: साहिल, आप अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए लेकिन आप परसों मेरी जानकारी के हिसाब से आपको पुलिस ने बुलाया था, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, कितने देर ये स्टेटमेंट चला और क्या आप कानून को सहयोग कर रहे हो?
4: मेरा स्टेटमेंट 10 से 12 घंटे चला, मेरी तरफ से कानून को पूरी सहायता है, कानून को, पुलिस को, जिसको भी।
1: तो फिर भारत की जनता को आप ये क्यों नहीं बताना चाहते या इस बारे में आप मीडिया के सामने क्यों नहीं बता रहे कि क्या आपको चेतन और सिया के पुलिस का जो आरोप है, पुलिस ने जो थ्योरी बताई है उस हिसाब से और जो हम लोग भी देख रहे हैं कि ये लोग आरोपी है इस हत्याकांड में, क्या आपको इसकी कोई भी जानकारी है? क्या आपने अपने माता पिता को या इनके रिलेशन को लेकर आपने कभी अपने माता पिता को कुछ बताया है?
4: जब सिया ने ही मुझे बोल दिया सर कि मुझे केतन के साथ ही आगे जाना है और चेतन के साथ मुझे कुछ नहीं रखना है, मैं बताकर करता क्या? जब उसने मुझे बोला कि मैं आपकी कसम खाती हूँ कि मैं इसके आगे ना चेतन से बात करूँगी ना कुछ करूँगी, मुझे उसके साथ कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरी लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ। वो घंटों तक, अब प्री वेडिंग शूट की जो बात चल रही है, वो घंटों तक प्री वेडिंग शूट प्लान कर चुकी है केतन के साथ उनके जो फोटोग्राफर्स हैं उनके साथ, सबके साथ, गाने कौन से चाहिए, लोकेशंस कौन सी रहनी चाहिए, वो सब वो दो दो तीन तीन घंटे तक वीडियो कॉल पर बात कर चुकी है। इस चीज़ से मैं क्या समझता सर, मैं बताकर क्या करता, किसको क्या करता?
1: तो पेरेंट्स को कभी बताया नहीं आप?
4: ये बात मैंने पेरेंट्स को कभी नहीं बताई सर।
1: कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे या दोस्ती थी उनकी?
4: दोस्ती ही थी सर, जब उन्होंने भी मुझे जब बोला है तो उन्होंने भी यही बोला कि भैया मुझे मालूम नहीं है ये क्या है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ।
1: मतलब रिलेशनशिप नहीं है?
4: रिलेशनशिप मुझे बताया ही नहीं, उन्होंने बोला कि हम दोनों साथ में रहते मुझे अच्छा लगता है, वी आर हैप्पी व्हेन वी आर टुगेदर, इट इज़ वेरी अर्ली टू से एनीथिंग, वी माइट गेट एंगेज, वी माइट गेट मैरिड।
1: So it was not a conviction or it was not a confirmation about a relationship.
4: It was confusion, sir.
1: It was a confusion.
4: Yes, sir.
1: It was a state of confusion. कि भाई क्या चल रहा है?
4: To which I also said, you are very young at age. It is okay. लोग दोस्ती को प्यार समझ लेते हैं. It is okay. Whatever you decide. अगर आपने मुझे केतन को बोला है कि मुझे केतन के साथ आगे जाना है, it is okay. It will be our secret. मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा.
1: और अगर वो कहती कि चेतन के साथ आगे जाना है
4: तो ये बात हम पेरेंट्स के सामने आगे लेके आते थे, हम उनको बोलते थे, हम ये सगाई तुड़वा देते थे सर।
1: तो आपने किसी को भी रिश्तेदारी में किसी को भी नहीं बताया?
4: किसी को भी नहीं,
1: माँ बाप को भी नहीं कभी? कानून के साथ आप जो परसों गए, कोई ऐसी चीज़ जो कोई नई चीज़ हो जो मीडिया में अभी तक नहीं आई?
4: जो स्टेटमेंट मैं आपको आज दे रहा हूँ सर वही मेरी पुलिस स्टेटमेंट में सेम चीज़ है।
0: Well, so you heard Sia's parents and her brother's statements as the probe, of course, is widening in the Pune murder mystery. Let's now take you through some of the key highlights as Sia and Chetan's custody has also been expanded, stretched to till July 3rd. First up, the crime scene has been recreated at the Lohagarh Fort a short while ago. Apart from that, Chetan was taken to the crime scene. And the police officials have also now turned to gait analysis to perhaps decipher Chetan's walking style. Because remember, he was wearing a hoodie and that is when police officials found something not correct. Somebody wearing a hoodie at 33 degrees Celsius. Apart from that, CCTV footage will also be matched with the recreated walk of Chetan Chaudhary. And new forensic clues have also been sought as the probe.

0: the same day refused legal aid to the accused. The Supreme Court has also at this moment denied urgent hearing as far as this case is concerned. Now, the opposition is out to, you know, as far as the opposition's attack on the government of Uttar Pradesh and the BJP is concerned. Let's first listen in to some reactions.
1: 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, आपके वोट बैंक की ताकत है।
2: मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों। और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है। और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जांच कर रही है SIT, आपने रिपोर्ट किसको दी है, आपने रिपोर्ट किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच SIT किसने बनाई है, SIT किसने बनाई और जांच किसको दी गई है, क्या SIT की भी जांच होगी क्या? जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने SIT बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको माफ़ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें।
0: Now, people are raising questions about, you know, whether this SIT or the investigation which is going on, is it only looking at this small fish? What about the people, those who were in charge of the trust? One of them, of course, Mr. Champat Rai, the General Secretary, the former General Secretary, if I may call him now, because he has resigned. And he was questioned by the SIT. So what did he say? What did he tell the police? Let me tell you that as well. Sources have told us that he has denied any role as far as the donation theft is concerned. He said that my complaint has triggered the arrest. But as I said, it's not something that happened in June this year. These allegations have been made for a very, very long time. What was the trust doing in all those years? He said he's responsible for overseeing donation collection. He moved swiftly after learning about the irregularities. And he took prompt action against the alleged wrongdoings. That is what he has claimed in his defense as the pressure continues. Now, the Congress Party chief of Uttar Pradesh has slammed Yogi Adityanath. This is breaking news coming in. Remember, Ajay Rai went to Ayodhya. He wanted to go, in fact, and protest there. He said that he wanted to go to Ram Mandir for darshan. Now, Ajay Rai, as per him, was detained by the police. Now, he has said that the BJP government's duplicity has been exposed. I am locked up in a guest house, not allowed to visit the Ram temple. Others are getting VIP darshan. Why is it that I am not being allowed? As a devotee of Lord Ram, why am I being stopped is what Ajay Rai is claiming at this moment, that the government is not allowing him to go to the Ram temple. Let's listen in.
3: ये मैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि विद्यालय के गेस्ट हाउस में हूँ और ये गेस्ट हाउस में मुझे इसमें अकेले बंद करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इधर हम ये दरवाज़ा सामने ये दरवाज़ा है, इसको भी बंद करके रखा हुआ है इन्होंने। अब ये देखिए पूरा इसको खींच रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये खुल नहीं रहा है। ये पूरा बाहर से बंद है और ये सामने आप देख सकते हैं कि ये सामने के भी ये दरवाजे यहाँ पर भी पूरा बाहर से बंद करके रखा हुआ है। ये बाहर के एक पूरे ग्रिल लगे हुए हैं, ग्रिल के अंदर बंद करके रखा हुआ है और ये बाहर के कौन है और पूरी तरीके से यहाँ पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई पूछने वाला भी नहीं है और कोई हम लोगों की सुध लेने वाला नहीं है। और दर्शन करने के लिए मैं अड़ा हूँ कि दर्शन बगैर भगवान राम का दर्शन किए नहीं जाऊँगा। ये दो तरह की मानसिकता, एक तरफ अरविंद केजरीवाल को बुला के दर्शन कराते हैं, पूरा VIP सुविधा देते हैं, और कांग्रेस के नेता हमारे आते हैं, हमारे नेतृत्व में डेलीगेशन किशोरी लाल जी, उज्ज्वल रमण जी, राकेश राठौर जी और तनुज पुनिया जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह और हमारे साथी एपी गौतम जी और हमारे वर्तमान के विधायक वीरेंद्र चौधरी जी, हमारे साथी और भी साथी मीता गौतम जी जो पूर्व हमारी विधायिका हैं, उन सब लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, सबको घर बंद कर लिया गया और हमें भी यहाँ पर पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है जी। शुक्रिया, धन्यवाद।
0: Now Ajay Rai, though he's from the Congress party, he's saying that, you know, he went there as a deputy. Why is he not being allowed darshan? And this has triggered a big political storm. Let me just also play out some other reactions on this story.
4: ये किस तरह का प्रशासन ये कर रहा है कि किसी हिंदू को दर्शन करने से वंचित रख रहा है? तो अगर हम दर्शन कर लेंगे तो क्या मतलब ये चंदा चोरी तो रोक नहीं पाए जिसको इनको रोकना था, और किसी को दर्शन करने से ये रोक रहे हैं? ये मतलब बहुत अन्याय मतलब कर रहा है प्रशासन, तो इस तरह की ये नहीं इनको करना चाहिए। राम मंदिर सबका है और सब लोगों को दर्शन करने का अधिकार है। कौन से हिंदू धर्म में लिखा है कि कुछ लोग ही दर्शन कर सकते हैं?
5: मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट को रोका गया है, अजय राय साहब। क्यों रोका गया? वो वहां जाकर जो वहां भ्रष्टाचार हो गया, लूटमार हो गई है, दान पत्र में दान पेटी गई, उस बारे में बात करेंगे? इसलिए राम मंदिर जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, आपको भी राम मंदिर आना चाहिए। हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, उनको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे, उनको भी जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी अभी जाकर आए, वापस हमारे साथ आ जाएंगे। ये कौन है राम मंदिर, उनके बाप भी जाके रह गया।
0: I want to just take a step back and just to try and understand the political implications. What will be the political implications and who would have to take the fall of what is happening here? Because this is shameful, ladies and gentlemen. Make no mistake about that. An issue which has so much, you know, emotional value, so much devotional value, and then to see that even in the Ram Temple Trust, this kind of, you know, donation theft was going on. Can thus the top leadership of the trust sit back and say, you know what, we did everything that we can and there wouldn't be any political fallout? I just want to understand that. I want to take this to two of our guests, those who are joining us at this moment. We are being joined by Asutosh, senior journalist, political analyst, and Rajat Sethi, political analyst for this evening. Gentlemen, thank you so much for speaking to us. Rajat, let me begin with you and understand this. Few people have been arrested. The top leadership of the trust, Mr. Champat Rai, who was questioned, he then resigned on moral grounds and went on to say, I have nothing to do with this. This is not that these allegations came out in June. This has been going on for several years, these allegations about the misappropriation or theft of the donation as far as Ram Temple is concerned. Can the top leadership of the trust save themselves? And politically, will the Uttar Pradesh government, the government at the center, or the BJP would be able to save itself from what is happening?
6: I mean, this is a question. If you ask me about the trust, if the people at the highest level are seen to be involved, why should they be saved? And why should there be no impact on those people? And I think all that we as citizens have to ensure and ask for is a fair investigation into this, and ensuring that people who are accused or against whom there is enough evidence are justice is meted out to them. Now, the larger question that you've been raising is about the political impact of this. I think 100% there will be a political impact. There is a sense of anguish among the Ram Bhaks around the country. But also, you know, looking at all these theatrics and the drama that the opposition party is doing, you know, where does a voter who is angry with the BJP go? Does that voter is going to swing into the favor of Rahul Gandhi, who hasn't even bothered, none of his MPs have ever bothered to even go out and visit the Ram Mandir? Today, like vultures, they're hovering over the place just so that they can scavenge something so that they can live on and do more politics on this. This is what further disgusts the Bhaks and the public at large. You know, I was just hearing what one of the Shiv Sena MPs was just trying to say, kisi ke baap ka nahi hai. तुम्हारे बाप का भी नहीं है। Did you attempt, did your leaders ever attempt to go to the ramp

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
5: 1933। सरसों से सरसों
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा
9: सबका राजा आर प्योर मसाला।
10: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
11: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
12: Really?
11: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
13: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
14: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु
15: सो मेनी अटैक्स

0: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना,
1: बाल्टी,
0: और मानसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना। पसीना मत बहाओ, बर्जर रूप

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: जब जाके कांग्रेसी 2047 तक कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे।
1: माफी मांग लीजिए आप, सबसे अच्छा आप शुरुआत आपके लिए वही होगा।
0: आप एक काम करो, मेरा निवेदन है, अब आप जाके ना औरंगजेब की मजारों पे भी जाना चालू कर दो, क्योंकि वही आपको करना है। आप मुस्लिम लीग पार्टी, अरे अगर राम भक्ति जागी तो जाओ ना प्रभु श्री राम के मंदिर। तारीख बताओ कब जा रहे हो, बता दो, मैं करा दूंगा कांग्रेस के लिए।
1: मॉकरी ऑफ अ वेरी सीरियस डिस्कशन।
0: अरे हाउ इज इट अ मॉकरी सर, व्हाट
1: हैपेंड इन द राम टेंपल, दे डोंट केयर, दे डोंट, आई डोंट थिंक भंडारी जी केयर्स एट ऑल। फाइव
0: स्टार होता है, फाइव स्टार अपार्टमेंट इन बांद्रा वेस्ट एंड थिंकिंग दैट यू नो द वर्ल्ड, दैट इज नॉट द सिनेरियो संजय जा। बिहारी बोलने से बिहार की नब्ज नहीं समझ में आती।
2: ओके, आई एम गोइंग टू गिव द फाइनल वर्ड टू हर्षवर्धन त्रिपाठी। जब हम योगी आदित्यनाथ को देखते हैं तो वो बड़े कॉन्फिडेंट तो लग रहे हैं। पिछले तीन दिन से उनकी मैंने जितने पूरे भाषण सुने हैं उसमें एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बैकफुट में है। इज दिस जेन्युइन कॉन्फिडेंस दैट ही विल बी एबल टू मैनेज द फॉलआउट, और इज दिस ब्लस्टर? इज योगी आदित्यनाथ नर्वस बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन अयोध्या?
3: पद्मजा, कई बार कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ ऐसा ही है। वो इस मौके का इस्तेमाल एक सख्त प्रशासक, नो नॉनसेंस पॉलिसी टुवर्ड्स एनी क्राइम एनी थेफ्ट, उसके तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए अभी अभी का एक बहुत सीधा पैरेलल है, सबरीमला के मामले में ऑन द डायरेक्शन ऑफ हाईकोर्ट FIR लॉन्च करनी पड़ी है, जबकि यहां पर SIT किसने बनाई? यूपी गवर्नमेंट ने बनाई। किसके कहने पर बनाई? ट्रस्ट के कहने पर बनाई। और कौन गिरफ्तार हुआ? जिनके ऊपर आरोप है। अगर नए लोग उसमें शामिल होंगे तो मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उस पर कार्रवाई करने में जरा सी भी हिचकेगी। और यह बहुत साफ है कि संघ का शीर्ष नेतृत्व, जो आलोक कुमार जी के बयान से दिखता है कि मोहन जी दत्ता जी का पहले दिन से यह था कि इसमें त्यागपत्र देना चाहिए, न्यास का पुनर्गठन होगा। और मुझे लगता है कि जिसकी बात की जा रही कि क्या वो ट्रस्ट वापस आ पाएगा, उस पर काम करते हुए दिखेंगे। तो योगी जी के लिए ये बिग अपॉर्चुनिटी है।
2: All right, let's see how this plays out. For the time being, all gentlemen, thanks very much for joining us. But make no mistake, without a doubt, this is going to be one of the top issues in the next few months when we go into election season. And speaking of elections, before that, Team BJP is also going to see a major rehaul. Prime Minister is back in the country, and against the biggest buzz in the national capital and across the country is there going to be a cabinet reshuffle before the monsoon session of Parliament, which is likely to be in the third week of July? Remember, there are two major changes that are set to take place side by side, one in the government and the second within the BJP itself. Nitin Naveen, who was made the BJP president in January, is yet to get his new team 5 months later. So that's one major change that is awaited. And the buzz is that many people from the government may be moved to the organization and vice versa. So what could be this shuffle in the offing? A couple of vacancies are very obvious. The Rajya Sabha term of both ministers Ravneet Bittu and George Kurian has ended, with Kurian already tendering his resignation. The terms of Hardeep Puri and B.L. Verma are also set to end in November. Then there are ministers like Pankaj Chaudhary and Harsh Malhotra. They have been given responsibilities at the state level. Harsh Malhotra was made the chief of the BJP in Delhi, and Pankaj Chaudhary was given a similar responsibility in Uttar Pradesh. So who could enter and who could exit? Now that is the million-dollar question, and not too many in Delhi, to be very honest, have any clue whatsoever, which is why we have got the people who actually do know what is happening. Akhilesh Sharma, managing editor with NDTV, is one of them. One of the very few people in the national capital who actually know what is going on. Akhilesh ji, aaj seedha seedha bolega. Give us the straight up, because everyone wants to know, and Harshvardhan Tripathi continues with us. All right, so let's a couple of things. One, more women are likely to find representation. Who do you think are the possible names?
4: I cannot name because there are no names which have been discussed. But first we have to answer the question, when is it going to happen? Or is it actually going to happen or not? Because the monsoon session of parliament is coming. Third week of July, most likely from July 20th, the session will begin. And the government has got very ambitious legislative agenda. We should not forget that in the last session, they were trying to push for this delimitation bill, which was not succeeded. It was defeated by the opposition parties. And apart from that, the government also wants to have this one nation, one election bill, one OE, that's what we call. So these two crucial bills the government wants to push. And you have seen that how the government was trying to muster two-third majority in both the houses. We have seen a split in the TMC. We have seen a split in the Shiv Sena UBT. And now these people have also joined the NDA. So now they also want to have their share in power. So, of course, all these permutation combinations are there. That's why the government wants to have first these bills get passed. And after that, maybe this session gets over. Then they may think about this cabinet.
2: So, I think the one window available is 11th when the Prime Minister returns from his next foreign trip and the 20th or 21st. So, that is the big window. And then I think there's before that 5th or 7th is when he's in town.
4: 5th is the window because from 1st to 3rd, the Japanese PM is in the country. PM will be busy with the engagements. And on 4th, PM is going to Rajasthan. 5th is the only vacant day so far. And after that, PM is going to go for this three countries visit to Indonesia, Australia, and New Zealand. So after that, once he comes back, the parliament session will have just, 10 days gap. Though in the past, we have seen that just before the parliament session, the cabinet expansion has taken place. But we have to see whether this actually happens this time or not.
2: And in fact, twice earlier, the cabinet expansion or the cabinet changes have happened in the month of July. So I think all the ministers have their heartbeats up. And all the MPs also have their heartbeats up. Because Harshvardhan ji, bade isme Twitter pe bahut kuch chal raha tha. Kai logon ne to lambi list bhi nikal di. Kuch log ye bhi keh rahe the ki Monday ko sare MPs ko, mantriyon ko Delhi bula liya gaya hai. To aaj to ho jana chahiye tha phir reshuffle ye sab Twitter ki uske hisab se. Aap kya sun rahe hain? Kitne changes honge aur kab honge?
3: Nahi. Pandya, mujhe lagta hai ki Akhilesh ne wo baat bata di jiski baat hum log karte hain na ki एक तो सोशल मीडिया पर मोदी गवर्नमेंट चलती है और एक रियल में मोदी गवर्नमेंट चलती है. दोनों के बीच में बड़ा फासला है. अब ये इतना सरप्राइजिंग है कि कोई पूरी की पूरी लिस्ट कर दे, यानी जो कुछ आपको ऑब्वियस दिख रहा है उसके लिहाज से कुछ कहानियां बना दे. क्या सचमुच मोदी गवर्नमेंट इस तरह से काम करती है? तो कम से कम 12 साल का और उसके पहले चीफ मिनिस्टर के तौर पर नरेंद्र मोदी का यह प्रेसिडेंस है ही नहीं. और तो और, नरेंद्र मोदी जब संगठन में थे तब भी ये प्रेसिडेंस नहीं है कि उनके काम करने के तरीके को कोई बहुत अच्छे से अनुमान लगा पाए. अब उसके दोनों वजह हैं उसमें. जब आप एकदम से इस तरह से करेंगे, जैसे अभी उदाहरण के लिए, जब आप अपनी जो टीम बनाते हैं उस टीम की जानकारी क्या बहुत लोगों से चर्चा होती है? तो ये बताकर कभी चर्चा नहीं होती, जो हमने नेशनल प्रेसिडेंट के समय देखा कि जो एक नवीन प्रयोग हुआ, नितिन नवीन यहां आ गए. अब नितिन नवीन को बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि शायद आज के समय के लिहाज से कई पैमानों के साथ नितिन नवीन जैसा नेता वहां चाहिए था उनको. लेकिन अब उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. जैसे अभी जो कैबिनेट बनने वाली है और जो नेशनल टीम बनने वाली है, जो अलग अलग राज्यों में दिखा कि नितिन नवीन के साथ युवा मोर्चा में काम किए हुए लोग वो अचानक बड़ी जिम्मेदारी में आ गए, तो एक बड़ा गैप सा दिखने लगा. फिर बीजेपी के लोग वो कैबिनेट में आएंगे, जो कैबिनेट की टीम है उसमें कौन कौन से मिनिस्टर थे उस पर प्रश्न चिन्ह जहां लगा, क्वेश्चन मार्क, उन सब को सोशल मीडिया पर मिनिस्ट्री से आउट कर दिया गया. और जहां जहां लगा कि यह गुंजाइश बन सकती है उनको इन कर दिया गया. जो अखिलेश कह रहे हैं वो उसी तरह की एक टीम बनाई गई और कहा गया कि उनको फोन कर दिया गया है. आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो दिन तीन दिन पहले मोदी कैबिनेट के मंत्रियों को पता चला है. दोनों बार जो एक्सपेंशन हुआ था उसके पहले की शाम को और उस दिन की सुबह को जो लास्ट मिनट जो एडिशन हुआ था वो पता चला था, वो अखिलेश जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे. मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है मोदी 2.0, मोदी 3 का, मोदी 2.0 का टाइम है. बड़े चेंजेज होने वाले हैं, एकोमोडेशन बहुत से होने वाले हैं. और जो सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी को पता है 29 के चुनाव के लिए इस टीम के साथ जाना है.
2: अखिलेश, आई विल आस्क यू स्पेसिफिक्स. इज इट ट्रू दैट 3 पार्टीज विल गेट greater representation? One is the Shiv Sena. NCPI will be included because now they are the second largest party technically in the NDA. And also Aam Aadmi Party, the rebels who have come.
4: I think first let's talk about the TMC rebels who have joined this NCPN. And what I believe that they have been promised cabinet berths.
2: Okay.
4: They will be part of the government. But as I mentioned earlier, that, you know, they have to first support these bills to get passed in the monsoon session. After only that.
2: How many berths have they been promised?
4: See, the kind of number they have, we have seen that the formula is very clear. That if you have more than 10 MPs, you will
2: one
4: get
2: cabinet,
4: one cabinet and one MOS. Similarly, in the case of...
2: Who will likely get it over there? Sudeep Bandopadhyay?
4: Sudeep Bandopadhyay is the senior most. And then Kakoli Ghosh is, of course, she is leading that rebellion group.
2: Okay.
4: So both are contenders, strong contenders.
3: Kakoli Ghosh. Okay.
4: And apart from that, if you talk about Shiv Sena, UBT, these 6 are joining the Shiv Sena Shinde faction. So now the Shiv Sena Shinde will have 13 Lok Sabha MPs, which is going to be more MP, larger group than the JDU. Yes. So that means they will also have one cabinet. So
2: and more than the BJP in Maharashtra, which is why Aditya Thackeray keeps saying that this is Operation Devendra Fadnavis. But Shrikant Shinde could get a cabinet berth?
4: I think there's a strong demand within the party that he should take the lead now. Mm. So because it's going to be a cabinet bust, so Shrikant Shinde is naturally a contender for that post.
2: Mm. And in fact, the irony is that a lot of people are saying that

0: big discussion in the Maharashtra politics. So a lot of things have to happen.
1: Okay.
0: As I mentioned earlier, because they are waiting for the, all these things to happen. They have to first get the 2/3 majority. This is the first priority.
1: Okay. One last 30 seconds that I have, Harshvardhan ji. Sangathan mein kya badlaav ke baare mein aap sun rahe hain? Sarkar ki humne baat kar li. Sangathan mein kya general secretary organization change honge? Nitin Nabin ke team mein kaun naye log ho sakte hain?
2: नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगी। हाँ ये जरूर है कि सुनील बंसल उनके डिप्टी के तौर पर आ सकते हैं, इसकी चर्चा बहुत जबरदस्त है। और जो ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़ा चेंज होगा, अगर विनोद तावड़े सरकार में जाते हैं तो वो एक बड़ा पद होगा जो महामंत्री का खाली होगा, और सुनील बंसल इधर जाते हैं तो दो महामंत्री के पद खाली होंगे। इसके अलावा लगभग पूरी टीम बदली जाने वाली है। एक जिसको मुझे लगता है कि शायद वो बीजेपी की टॉप लीडरशिप में वो चर्चा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूथ लीडरशिप के चक्कर में आप जो युवा मोर्चा से बीजेपी में गए लोग हैं और फिर से पीछे आप जिसको कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन, वो खतरा भी दिख रहा है, तो शायद उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखने की कोशिश होगी।
1: ऑल राइट, बट लेट्स बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट दैट वेरी फ्रीक्वेंटली व्हेन दीज चेंजेस हैपन, सम ऑफ द पीपल एक्चुअली गेट दैट कॉल आफ्टर मिडनाइट व्हेन द न्यूज़पेपर्स हैव ऑलरेडी बीन पुट टू बेड। सो वेट टिल द लास्ट डे, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। टिल देन we can safely say you heard it first when the final results are out. Thanks very much, Akhilesh ji, Harshvardhan ji, for joining us. Thanks so much for watching.

0: Rajesh Chavan, a local resident and an eyewitness to what happened, is also live with me tonight. Dipesh ji, aapka swagat hai. Ye bahut hi dukhad ghatna hai, jisme Vihan ka dehant hua hai ghatna mein, Chembur mein. Aap the wahan par, kya hua tha exactly?
1: जी, तीन बच्चे मुझे संदेश पवार करके हमारे एक भाई है, कजिन
0: जी,
1: वो वहाँ से जा रहे थे तो उनका मुझे फ़ोन आ गया था कि ऐसे ऐसे एक बस पे झाड़ गिरा है, तो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाओ करके. तो हम लोग ने सब यहाँ से वहाँ पर निकल गए, तो सब यहाँ पर भागम दौड़ी होने लग गई थी. तो वहाँ से एक 10-12 बच्चों को वहाँ से निकाला गया. बस एक बच्चा जो था वो अंदर फंसा था, बस के बराबर बैक साइड पे वो बड़ा पेड़ गिरा हुआ था. तो फिर हमने वो निकल नहीं पा रहा था, इसीलिए फिर हमने दो क्रेन्स मंगाए उसके लिए, जो लोकल हमने फटाफट हमारे आजू बाजू में जो डेवलपमेंट चालू है तो वहाँ से हमने वो क्रेन मंगा कर ले लिए. फिर वो क्रेन से उठाकर जब वो बस थोड़ी हिलने लग गई, तब फिर वो एक बॉडी अंदर से निकालने में कोशिश हमारी पूरी कंप्लीट हो गई. बस उसे बचा नहीं सके, बाकी जितने जन थे उनको हमने वहाँ से रेस्क्यू कर दिया था. और टाइम पर फायर वाले वगैरह पहुँचे थे, हमारे डीसीपी साहब थे, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थे हमारे चेंबूर के, तो सबने मिलकर वहाँ पर जितना कर सके हमने हेल्प कर दी वहाँ पर.
0: दीपेश जी, क्या ये सच है कि आपने
1: बहुत से यहाँ पर पेड़ है वो पेड़ का?
0: जी जी, दीपेश जी, मेरा सवाल ये है कि क्या ये सच है कि आपने और इस इलाके के लोगों ने काफ़ी बार शिकायत दर्ज की थी बीएमसी के पास, अथॉरिटीज़ के पास, कि ये एक रिस्क हो सकता है, ये पेड़ जो है ये ट्रिम नहीं हुए हैं, बार बार शिकायत दर्ज हुआ था, क्या ये सच है?
1: जी, वहाँ पर वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उन्होंने भी वहाँ पर कंप्लेंट दी हुई थी. फिर हमारे स्थानिक एक एमएलए हैं, उनके पास भी ये कंप्लेंट दी थी पीएमसी में. और यहाँ पर ये एक ही पेड़ नहीं, ऐसे बाजू के रोड में भी है, यहाँ पर सब पुराने पेड़ जो है जो ट्रिमिंग हुए नहीं है. और जो अभी ये 2 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले ही वहाँ पर जो सीमेंट कंक्रीट रोड बनाया हुआ है उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वहाँ पर उन्होंने कुछ भी वो रूट्स के ऊपर ही पूरे कंक्रीट डाल के रखा था. तो अगर उनको पानी नहीं मिल रहा है तो फिर वो खराब होंगे.
0: बिल्कुल, इसका मतलब ये है दीपेश जी कि अगर सिविक बॉडीज, अगर बीएमसी ने कुछ काम किया था, अगर उन्होंने रिएक्ट किया, ये सारे कंप्लेंट्स जो सामने आए थे अगर वो रिएक्ट किए तो ये एक जान बच जाती, आज विहान का देहांत नहीं होता.
1: जी जी,
0: तो अब आप क्या करेंगे? फिर से चिट्ठी लिखेंगे बीएमसी को,
1: क्योंकि
0: एक छोटा सा बच्चा चला गया है. अब
1: कल हम एक रेसिडेंशियल करके कल हम वार्ड ऑफिसर को एक निवेदन देने वाले हैं इस बात पे, और दोबारा यहाँ पर ट्रिमिंग हो जाए ये हमारी मांग है. क्योंकि यहाँ पर अभी ये रोड के बाजू में 3 स्कूल है, ओएलपीएस, सेंट एंथनीज एफएक, उसके बाजू में कर्नाटक है, अपोजिट साइड में सरस्वती है. मतलब ये जो लेन है हमारा, यहाँ पर ही नियर बाय 100 मीटर्स पे ही 3 से 4 स्कूल्स है. तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे आते जाते रहते हैं. दोबारा ये घटना ना हो, इसीलिए हमने वापस कल दोपहर 11 बजे का हमने टाइम लिया हुआ है डीएमसी से, और उन्हें उनको हम ये निवेदन देने वाले हैं कि दोबारा ये ट्रिमिंग की जाए. बारिश तो अभी 2-4 दिन से चालू हो गई है, यहाँ पर ट्रिमिंग ही नहीं हो पा रही है, तो फिर सर ये तो घटना होने ही वाली थी.
0: मेरा आखिरी सवाल दीपेश जी, एनडीटीवी ने मुंबई के मेयर को कन्फ्रंट किया, उनको सवाल किया कि आपने क्यों एक्शन नहीं लिया, बार बार इतने कंप्लेंट्स दर्ज किए गए थे आपके डिपार्टमेंट में लेकिन आपका डिपार्टमेंट ने रिएक्ट ही नहीं किया. उन्होंने बोला है एनडीटीवी को कि वो जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर कुछ नेग्लिजेंस या लैप्स हुआ है तो एक्शन लिया जाएगा. क्या आपको विश्वास है कि कुछ एक्शन लिया जाएगा या कुछ नहीं होगा?
1: देखिए, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक्शन ले लिया जाए, और अगर नहीं ले पाएंगे तो हम यहाँ के रेसिडेंशियल सारे मिलके वापस दोबारा मोर्चा निकालेंगे. क्योंकि एक जो बच्चा जिसके जिसका देहांत हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, वो आज एक लौता बेटा था, 11 साल का बच्चा था। कल ये ना हो कि कोई हमारे घर से हो जाए घटना, कहीं आपके घर से हो जाए, ये जिम्मेदारी है वार्ड ऑफिसर्स की, गार्डन डिपार्टमेंट्स की, रोड डिपार्टमेंट की। यहाँ पर सीसी रोड्स बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो भी पूरा काम कंप्लीट नहीं है। आप अभी भी आप कल भी आ जाओगे दिन में तो भी मैं ये बताने के लिए रेडी हूँ कि कितने सारे रोड्स पे हर झाड़ के ऊपर इन्होंने सीमेंट कॉन्क्रीट डाल के रखा हुआ है, हर झाड़ पे।
0: जी जी,
1: तो रूट्स तो वहाँ के मरने ही है।
0: दीपेश जी, हमसे और एनडीटी से बात करने के लिए बहुत
1: धन्यवाद। कल से
0: जी जी, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि एनडीटीवी का रिपोर्टिंग जारी रहेगा इस मुद्दे पर, इस स्टोरी पर हम ध्यान रखेंगे और हम जस्टिस लाएंगे विहान श्रीवास्तव के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद दीपेश। Meanwhile, something deeply disturbing is happening in the Siya Goyal case. Alongside the unfolding police investigation, viewer, a parallel campaign appears to have begun to soften the glare on the young woman accused of murdering her fiancé, Ketan Agarwal. It's a story that has taken the country by storm. It's happening at different levels, I don't know if you've noticed, by different stakeholders, all gently nudging the narrative away from the alleged crime and towards the accused herself, Siya Goyal, as a victim. Not a ruthless murderer, but a trapped young woman. Not a privileged girl who allegedly chose a horrifying solution, but the pitiable product of patriarchy. Yes, context matters, but this increasingly looks like a coordinated exercise to me in dilution, deviation, and distraction. Siya Goyal's family, understandably desperate to protect their daughter, is engaging in narrative shaping and trying to shift attention onto Ketan, the victim, and his family. Influencers on social media are finding everyone else to blame except Siya. Feminists are asking why the focus isn't on smashing the patriarchy instead of the accused. Commentators and columnists are intellectualizing the case with essays about marriage, youth culture, and social pressures. Perhaps some of those conversations deserve to happen at some point, but not at the cost of losing sight of the central question. A young man, Ketan, is dead. Investigators say this was a calculated murder. If the allegations are true, the choices that matter most are the ones Siya Goyal allegedly made and the questions that now confront her and her family. Not everyone else.
2: इसमें जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए।
3: सख्त से सख्त मतलब क्या?
2: सख्त से सख्त फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की
3: सजा। कल अगर ये अदालत में साबित होता है कि सिया ने ये किया है
2: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए, मैं तो बोलूंगा।
3: आप होशो हवास में?
2: यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ। जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए।
3: तो क्या सिया चेतन दोस्त है ये आपको कभी पता नहीं था? मैं फैक्ट चेक चाह रहा हूँ व्यूअर्स, हमारा पर्पस है फैक्ट चेक पब्लिक के पास पहुँचे। क्या ये दोनों दोस्त थे, क्या आपको जानकारी थी?
4: दोस्त थे, वो भी जब मार्केट की मैच थी उस टाइम तक जो दोस्त थे। बाद में जब बच्ची की सगाई होने के बाद मुझे नहीं लगा कि सिया कभी दोस्त बनी है या उसने कुछ, उनका दोनों का ऐसे कुछ चल रहा है।
3: रिलेशनशिप वाला नहीं,
4: रिलेशनशिप वाला नहीं था। अगर बाय चांस रिलेशनशिप रहता था तो वो केतन से इतना प्यार नहीं करती थी, या केतन के फ़ोन नहीं उठाती थी, या केतन के साथ कभी आप उनको लगा कि वो सिया प्यार नहीं कर रही, तो वो मुझे पूछ सकते थे कि सिया केतन के फ़ोन नहीं उठाती या केतन से नहीं मिल पा रही है, कहीं जा नहीं रही है। ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं चार महीने में।
3: क्या आपको भी केतन को लेकर सही में दिल में उतना दुख है जितना उसके परिवार को हो रहा है?
5: दुख मुझे बहुत दुख है। मुझे केतन जी ने आज इतना प्यार दिया, मुझे इतना प्यार दिया मेरी फैमिली को। आज मेरे बेटा साहिल भी इतना प्यार नहीं देता था जितना प्यार मुझे केतन जी ने दिया। मैं आज उसके लिए तड़फ रही हूँ। मैं इसीलिए तो आपको वो शब्द बोल रही हूँ, अगर किसी ने भी उसको उसका किया हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए।
3: किसी ने भी,
5: जिसने भी किया हो तो भगवान को मंजूर मालूम है कि किसने किया है।
3: अगर आपकी बात को देखा जाए तो साथ में फिर सवाल उठता है कि वो एक क्रिकेट मैच वाला फोटो आ रहा है मार्केट यार्ड का जो आपने देखा, लेकिन मेहरामगढ़ फोर्ट में चेतन सिया गए थे, हमारे सूत्रों के हिसाब से ये भी पता चल रहा है, ऐसे कुछ फोटो मैंने खुद देखे हुए हैं।
4: वो किसी फ्रेंड की शादी में गए थे और वहाँ मिले थे वो लोग,
3: मतलब
4: उदयपुर में। हाँ,
3: रिलेशनशिप में थे?
4: नहीं, रिलेशनशिप में नहीं थे, फ्रेंड की शादी में गए थे और फ्रेंड की शादी अटेंड किया।
3: क्या ये आप लोगों को या केतन को पता था इस चीज़ का?
4: केतन को उसने बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है चेतन नाम का लड़का।
0: नाउ इट माइट बी अ स्ट्रेच टू से देयर इज अ कोऑर्डिनेटेड सेव सिया कैंपेन, अ नेफेरियस नैरेटिव, बट आई वांट यू टू जस्ट कंसीडर व्हाट इज हैपनिंग। नंबर वन, फ्रॉम द फैमिली contradictory statements, as you just saw, to confuse, narrative setting on the daughter, and also sowing seeds of sympathy. Then you've got feminist activists who are peddling this entire patriarchy angle, suggesting that Sia Goyal was the one who was harassed. You've got influencers on social media, we don't know whether they're paid or unpaid, projecting Sia as a victim, because now this story is about digital content, getting millions of views. They're also projecting Ketan as the aggressor. And on the top of all of this, you've got intelligentsia, columnists, commentators, calling it a generational issue, blaming youth culture and pinning it sometimes on marital dynamics. Basically, everything other than the centrality of the crime committed by allegedly Sia Goyal herself. To talk a little bit about how this unfolding saga is shaping up, I'm joined now by veteran IPS officer and law enforcer Dr. Kiran Bedi, former Lieutenant Governor, and someone whose word is taken more seriously than anyone else I know when it comes to issues of this kind. Dr. Bedi, always a privilege. Thank you, ma'am, for your time tonight on this story. My first question is a broad one, ma'am. You know, it has been nearly 2 weeks since this crime took place. You've seen the twists and turns that are taking place. What are you making of it, Dr. Bedi? Welcome.
6: Yeah, I'm wanting to ask the police, have they involved a psychologist in their interrogation or a psychiatrist in the investigations? Mm. If they have, it'll be the right thing to do. If they haven't, they must. Because it's all about the mind, what's gone on the minds before. Because all that I know, yes, is what's appearing in the newspapers time to time, isn't it?
0: Yes.
6: That's all. Because you and I are not investigators. And investigations changing, because as you listen to more and more people, everybody would have their own perspective. Hmm. Somewhere indirectly and somewhere directly. So I think it's a very important case for a psychologist to be involved to understand, why did the girl do whatever she did?
0: Yeah.
6: Why did Chetan do whatever what happened? And of course, Ketan is no more, so we don't know that. Hmm. So therefore, Shiv, this is my initial response.
0: Yeah.
6: And it's very, very important also that the police, at the conclusion of the evidence, does share the psychologist's report. That's a very important expert, because it's all been a mind war. It's all in the mind. It's grown in the mind. It's acted through hands. But it's all in the mind. Therefore, we need to know. Society needs to know. In fact, this is of more greater interest to me now.
0: Indeed. And, you know, Dr. Bedi, it's interesting you say that, because last night on this very show, we had two very prominent criminal psychologists to come and comment on this case itself. I wanted to ask you from, a law enforcement professional's perspective, how complicated does an investigation become, you know, when the investigation is about, like you said, about the mind, about the psychology of it and the implications?
6: It seems it's not a very complex case, because so far, plenty of evidence has come on surface. There's a digital evidence. There's a digital acceptance of a relationship or a friendship, because I'm only going from the initial reports. What's developed after can be added on. But initially, which happened when the incident broke, was this. That here were two persons CR was concerned with. One was engaged with, and the other one who was going around with. Now, to what extent parents knew about it, we don't know. Only the investigations will reveal. So therefore, initially, what is emerging is two, and that she wasn't interested in getting married to this person called Ketan, and how attempts were made prior to the man being thrown off the cliff. Hmm. That's all. I'm only going by that.
0: Yeah.
6: What's happened afterwards can be added on and can be managed. But I think I would go by that, because I'm not an investigator.
0: Yeah.
6: So I think it's not a difficult case. And even the replay of the case, which the officer has gone and done reconstruction of the scene, has appeared that he has been thrown off.

0: स्पेशल।
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसों वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द गिफ्टेड कंटेंट राइटर मीट्स द कूल यूआई यूएक्स डिजाइनर मीट्स द टैलेंटेड फोटोग्राफर टू क्रिएट द बिग ड्रीम। द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। सो वेयर आर यू?
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
10: The news, Ayush. Since when do we do scripts? Fair point. Picture this. The biggest stage. Floodlights.
11: Wow.
10: 4K. The works.
11: Where's the hook?
10: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
11: Where's the hook?
10: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
11: Bro, where's the hook?
10: Cross-platform, digital first, virality.
11: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You gotta be real in a world of reels. You gotta be original in a world where everything seems generated.
10: That's it. That's what we're looking for.
11: The best campaigns.
10: The hottest trends.
11: The smartest brand moves on our new show.
10: But wait, what do we call it?

0: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
3: एनडीटीवी टॉप्स द रॉयटर्स इंस्टीट्यूट इंडिया रीच रैंकिंग्स अगेन नंबर वन इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन न्यूज रीच फॉर द सिक्स्थ ईयर इन अ रो ऑडियंसेस कंटिन्यू टू चूज NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.
4: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
5: Really?
4: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter

0: But the transplant has still not happened. They are not alone. Some have been here for weeks, others for months. And a few have spent nearly a year here. What unites them is the same diagnosis, kidney failure, and the same uncertainty, waiting for their turn for a transplant.
1: कितनी तो दोनों डैमेज हो गई है तो पानी भर गया था पूरे शरीर में सूजन आ गई थी इसलिए यहाँ एक साल भर पहले भी दवाई करवाई थी फिर अब भी डॉक्टर ने कहा कि आपका फिर उन्होंने कहा कि मैं किडनी दे दूंगा ट्रांसफ़र करवा दवाइयों करके फिर चालू हो गई दवाई फिर सब रिपोर्ट कंप्लीट करवा दी
2: ठीक है ठीक है और आप डायलिसिस के लिए जाते हैं रोज
1: नहीं हफ्ते में दो बार जाते हैं अब पहले तीन करते थे अब दो कर रहे हैं
0: On May 30th, their treating doctor, senior nephrologist Dr. Dhananjay Agarwal at the SMS hospital, retired. According to the family, their surgery was delayed by nearly a month. Room number 518 on the fifth floor of the nephrology department has now become the center of controversy. This was Dr. Dhananjay Agarwal's office. Patients allege that after his retirement, records relating to transplant cases remained locked inside, delaying treatment for several patients awaiting surgery. The room has now been opened and another doctor, Dr. Sanjeev Sharma, has taken charge.
3: तो ये चल रहा है वो जो न्यूज थी वो ये थी कि भाई रूम लॉक्ड है तो अब वो रूम लॉक्ड नहीं है उसकी की आ गई है और वो रूम खुल गया है तो रूम लॉक्ड होने से कोई पेशेंट के ट्रीटमेंट में फर्क पड़ रहा हो ऐसा नहीं है पेशेंट का तो जो रेगुलर ट्रीटमेंट जो एंड स्टेज रिनल डिजीज वाले पेशेंट्स का होता है जो उनका न्यूट्रिशन है जो एंटीबायोटिक्स हैं जो उनका सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जो डायलिसिस है वो चल रहा है उसकी वजह से नहीं कमरा ये था कि कमरा बंद है इसलिए ट्रांसप्लांट रुक गया कमरा बंद होने से तो ट्रांसप्लांट नहीं होता है
0: Following questions over the delays, hospital authorities have reassigned the pending transplant cases. For Jayanti Lal and Anita, that has brought a glimmer of hope. Doctors have now assured them that if their medical parameters remain stable, Anita's transplant could be performed within the next 2 weeks.
4: डॉक्टर ने सब कागज सब जमा करा दिए हमने तो पूरी रिपोर्ट रिपोर्ट सब जमा कर दी हमारी दोनों की मैच किडनी में आ रही है बस 15 मार्च से डॉक्टर साहब रिटायर्ड हुए उसके बाद से नहीं फाइल अटक की बाकी थोड़ा ज्यादा थे
0: Inside the same Dharamshala is Nitin Saini, who has traveled from Uttarakhand. His sister has been found to be a matching donor. While waiting for surgery, Nitin continues to undergo dialysis with his mother and sister accompanying him to the hospital every day. For 35-year-old Mahinder Saini, the wait has been even more devastating. His father was to donate a kidney, but as the transplant was delayed, Mahinder's health worsened. He is now admitted to the ICU unit. For patients suffering from end-stage kidney disease, time is not just measured in days. It is measured in dialysis sessions, borrowed money, days spent away from home, and sometimes in declining health. In Jaipur, Harsha Kumari Singh, NDTV.
5: Slipping into a very short break, don't go anywhere, keep watching NDTV and we will be bringing you more latest updates on AFT Story.

0: वी विल टॉक नॉट दरी बिछाए इस वक्त दरी नहीं बिछाएंगे इक्वालिटी हैव सम रिस्पेक्ट वी विल गिव यू रिस्पेक्ट यू गिव अस रिस्पेक्ट सिट डाउन वी विल टॉक बट इफ दे शो एरोगेंस दैट वी आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन सो वॉट हैपन्स पद्मजा इज दैट वेन वी से ओके कम इन अलायंस बट दे शो द एरोगेंस दे डोंट कम एंड वेन वी कॉन्टेस्ट इलेक्शन देन दे कम ऑन योर चैनल एंड दे शाउट ऑन टॉप ऑफ इट सेइंग दैट ये वोट कटवाया बी टी में सी टी में डी टी में दो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट ऑल्सो ऑन दिस साइड वी हैव गॉट दिस सेक्युलर पार्टी ऑन द अदर साइड वी हैव गॉट द बीजेपी इफ यू बी एवरीबडी इन द कंट्री हैज सीन व्हाट हैज द बीजेपी डन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी इन द लास्ट 12 इयर्स वेन their power they bulldoze our madrasas they bulldoze our masjids and they have a difficulty they have problem with everything which we practice and now Pradeep Bhandari who is sitting here the BJP spokesperson does not have any shame he's still not saying that okay I condemn the theft that has taken place in Ram temple instead of that he's trying to punish them and support them he's saying that Pradeep Bhandari had been a Muslim involved in
1: had there been a Muslim everybody would have gone to the court like you've gone to the court to defend terrorists
0: kindly say that
1: please don't provoke me to open my mouth my dear friend Baris Pathan had it been a Muslim first of all no Muslim will be there in the Hindu temple trust but had it been a Muslim you would have gone to the court like you have gone to the court saying ki meri babri chali gayi you would have gone to the court to protect the terrorists had it been a Muslim that is what would have happened that is what you would have done
0: you conspired to murder our babri masjid you built a
1: are babar and babri and aurangzeb and all are now things of past now start thinking about mathura That is where you have to see.
0: To kill the emotions of our Hindu brothers and sisters.
1: Ayodhya ka jaaki hai, Mathura baaki hai. Ye bol ke batao.
2: Okay, you know, when we see this debate, when people watch this debate, Harshvardhan Tripathi, again they start wondering, do people from the AIMIM, people like Asaduddin Owaisi, come out in situations like this only because to hear Waris Pathan say ki are Prabhu Shri Ram ki wajah se Hinduon ki dharm aahat hua hai, unki bhavnaye aahat hui hai, suddenly Hindus start getting defensive not and they gravitate away scam. From the Congress, from the Samajwadi Party. Ye outrage katwa ban jate hain. AIMIM.
0: I am talking about the scam.
2: Jo outrage abhi BJP ki taraf tha, wo sara Owaisi saab ki taraf ho jata hai.
0: Is affected.
2: Harshvardhan ji.
3: Nahin, Padmaja, sabse pehle to jo kuch log murkhatapurna baat kar rahe hain, unko band karna chahiye. अयोध्या के ट्रस्ट में कोई मुसलमान क्यों होगा मक्का मदीना में हिंदू चलाता है क्या तो पहली बात तो मूर्खतापूर्ण बात करना बंद करें नंबर एक नंबर दो ये जिन जिन लोगों ने वो मिश्रा हो शुक्ला हो श्रीवास्तव हो यादव हो कोई और हो वो चोरी किया है तो उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी भारतीय न्याय संहिता संविधान कानून के दायरे में मिलेगी अब तीसरी चीज जिनकी नानी के राम बाबर के तोड़े बाबरी मस्जिद के बाद बने मंदिर में नहीं रह सकते वो नहीं बोल सकते जो हैं ही नहीं हिंदू वो नहीं बोल सकते जिनके लिए ये ऐश्वर्या नाचती हुई दिखती है इसको जरा ध्यान से सुनिएगा पद्मजा ये ऐश्वर्या राय बच्चन पर टिप्पणी नहीं है ये टिप्पणी राहुल गांधी पर है जिनको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा और मंत्रोच्चार की जगह ऐश्वर्या नाचती हुई दिख रही थी जबकि बेचारी ऐश्वर्या तो उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुई थी और फिर मैं कह रहा हूं ये योगी आदित्यनाथ को उनकी अपनी पिच पर और मजबूती से खिलाने की तैयारी है जब आप ये सारे सवाल करेंगे तो उस सारी की सारी जनरेशन को जिसको भूल गया था कि गोली चली थी जिसको भूल गया था कि फैजाबाद को अयोध्या न बनने देने की साजिश किसने की जिसको भूल गया था कि 700 मीटर के अयोध्या में कटी फटी सड़क और फटे तिरपाल में राम ये पहचान थी जिसको भूल गया था कि फैजाबाद कभी किसी के लिए रहा ही नहीं वो सीता की श्रापित नगरी रही इस तरह से देश के बुद्धिजीवियों ने चलाया और जब आज राम राज्य वाली अयोध्या बन गई है तो उसमें चंदा चोरी के बहाने चढ़ावा चोरी के बहाने दान के बहाने राम और हिंदुओं पर हमले की कोशिश है और मैं फिर कह रहा हूं ये जो भी कर रहे हैं उनको शायद अनुमान नहीं है योगी आदित्यनाथ तो इसी के खिलाड़ी हैं उनकी तो ये यूएसपी है वो तो इस चीज को चाहेंगे कि ये बार बार इसकी चर्चा हो हां एक बात पर मेरा ऐतराज है कोई भी किसी पार्टी की बी टीम नहीं होती है असदुद्दीन ओवैसी न भाजपा की बी टीम है न कांग्रेस की टीम है न सपा की बी टीम है ऐसे तो जब समाजवादी पार्टी शुरू हुई थी वो भी किसी न किसी की बी टीम कही जाती और इस तरह से तो कोई भी नई पार्टी जो खड़ी होगी उसको पुरानी पार्टियां आने ही नहीं देंगे ये कह के कि बी टीम है लेकिन मुझे लगता है अब यूपी का चुनाव ओवैसी बनाम अखिलेश मुस्लिम वोटों को पाने की राजनीति

0: यानी दोनों एक्सट्रीम पर खड़े हैं, मुसलमान हमारे साथ चलाए, इसकी पूरी राजनीति हो रही है।
1: इंटरेस्टिंग संजय झा। सो हर्षवर्धन त्रिपाठी थिंक्स एक्चुअली द मोर यू टॉक अबाउट दिस इश्यू द मोर स्ट्रेंथेंड योगी आदित्यनाथ विल बिकम, बिकॉज दिस इज लिटरली समथिंग दैट ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एट द एंड ऑफ द डे पीपल आर गोइंग टू से ही इज अ योगी। सो you will never accuse him of being complicit in a theft. On the other hand, he will say, look at these people who are talking about it. I am sending these people to prison, but these people have the kind of history which Harshvardhan Tripathi alluded to, where they said ki Ram Temple, Pran Pratishtha, Aishwarya Rai was dancing, although she wasn't.
2: Well, let me tell you one thing, Padmaja. There are people like Mr. Tripathi who are taking the Hindu sentiment so much for granted. They believe that political rhetoric by leaders will convince them that what has happened in Ayodhya, the violation of trust and faith, can be just washed away by giving speeches. They really believe that. If the Tripathiji believes it, good for him and good for the BJP. But don't remember one thing, that the people of India are intelligent, discerning, and they are aware of what is going on. They are aware that in the name of Bhagwan Ram, a political party ran a campaign, and they were taught a lesson by the people of India and by the people of Uttar Pradesh immediately in the Lok Sabha election, saying, do not politicize my religious faith. Now what they're witnessing in broad daylight is a brazen violation of elementary processes to safeguard the donations made to Bhagwan Ram. I mean, there is enough on record to tell you that 6 years ago, there were audit committees that told the government, you need to have a standard operating procedure. You need to put systems in place to make sure no cash is frauded. And they looked away. And if Mr. Tripathi is, you know, kind of foolishly believing that none of it matters, that the people are in fact going to be very excited.
1: Don't take Hindu sentiment for granted.
2: God bless him. He's insulting the people of Uttar Pradesh and India.
0: Padmaja, I'm saying again, Sanjay Jha ji. संजय झा जी भले बिहार से हैं, रहते मुंबई से हैं, हकीकत से पूरी तरह से कटे हुए हैं, इनको हिंदू
2: से भैया आपसे धार्मिक सर्टिफिकेट हमको नहीं लेना है।
1: अगर हिंदू कभी ये चैलेंज किया कि संजय,
0: मैं एक सवाल कर रहा हूं,
1: बिहारी एक्सेंट अनर्थ करते हैं ना कि आप चक्कर खा जाएंगे।
0: आपको पता है कि श्री रामलला विराजमान
1: बिहारी एक्सेंट में तेजस्वी जी को समझ में भी नहीं आया।
0: 2019 का निर्णय आने के पहले श्री रामलला विराजमान
2: मुंबई में रह रहा हूं, तो इनके इनके
0: आपको जानकारी है
2: कि मैं
0: धर्म मैं बता रहा हूँ, मुझे जानकारी है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, आपको नहीं पता है, आपकी समझ नहीं
2: है। इन लोगों
0: 5 लाख रुपए
2: यही बेतुका बेहुदा बात जो होता है ना,
0: राम लगा विराजमान के
2: खाते पर आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं। पार्टी जी
0: राजनीति
2: के लिए समझे ना,
0: 500 रुपए का
2: मेरा घर मेरा मजहब पर आप होती करने वाले कौन है,
0: अधिकारी कराते
2: हैं,
0: आपके पास पैसे नहीं होते थे, कोई फंड नहीं था, और वहां की सड़क के लिए कोई बजट नहीं था आपके पास। जो लोग पंचकोसी और वहां की परिक्रमा करते थे, जरा उनके रास्तों का हाल जाकर देख लीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिन्होंने चंदा चढ़ावा दान गबन चोरी की है, वो नीच किस्म के लोग हैं, उनको उनका दंड भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन जो लोग मंदिर को कह रहे थे कि तो संघ और भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, किसने कहा था? संघ और भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और कांग्रेस को इस राम मंदिर आंदोलन
2: की वजह से
0: एक नुकसान नहीं हुआ है। सत्ता उनकी गई, उनके अपने कर्मों से गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों की सरकार गई थी, 4 राज्यों की सरकार, कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हुई थी, 3 और राज्यों की सरकार अनडेमोक्रेटिकली भी अनकॉन्स्टिट्यूशनली क्यों गिराई गई? क्या देश के लोगों को यह सब याद नहीं आएगा? और संजय झा, मैं तो फिर कह रहा हूं, इस पर जितनी चर्चा होगी उतना योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी
2: चले वो भविष्य बताएगा।
0: अगर वो कानूनी कार्रवाई करते
2: बताएगा,
0: अगर वो टिन्नू यादव से लेकर लोकुश मिश्रा को बचाते हुए दिखे, तब उनको नुकसान होगा। लेकिन अगर वो जेल जा रहे हैं, अगर रिकवरी हो रही है, अगर कार्रवाई हो रही है, तो उनका नुकसान उनको भला क्यों?
1: लेट मी आस्क यू अ बेसिक क्वेश्चन संजय झा, व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ कवर अप? देयर इज एन एसआईटी, 8 अरेस्ट हैव बीन मेड, एफआईआर हैव बीन लॉज्ड, मोर पीपल आर बीइंग क्वेश्चन टू रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट, व्हाई despite all of this, do you think that enough action is not being taken?
0: And all the
2: statements made by Vinay Katyar and Bhushan Singh, who are part of the BJP. अरे त्रिपाठी जी जरा बोलने दीजिए, चुपचाप सुनिए जरा 2 मिनट, कहे इतना उतना बखराइए मत। ब्रिज विनय कटियार एंड ब्रिज भूषण सिंह, दे वर सेइंग

0: meeting, but however, they are maintaining the friendly relationship with the TVK party. So as far as tomorrow is concerned, TVK meeting is going to be very crucial meeting, as TVK is trying to strengthen their base in Tamil Nadu ahead of local body elections and bipole election, especially after DMK, former DMK allies have shifted towards TVK. Tomorrow's crucial meeting to happen at outskirts of Chennai.
1: Absolutely, the humble political pie of Tamil Nadu will be seen and proven in the upcoming local body elections. Thank you so much, Vijay, for those details. Now let's tell you more about what to be expected amid intensified political realignment in Tamil Nadu. The ruling TVK has invited several parties for a meeting. This is including VCK, MDMK, Indian Union Muslim League. According to party sources, the meeting has been convened to thank alliance partners for extending support to TVK and to discuss the roadmap for closer coordination in the run-up to the next phase of political activity in Tamil Nadu. TVK has also extended an invitation to MDMK Chief Vaiko, who is expected to attend this meeting. Meanwhile, VCK is likely to announce exit from DMK Alliance and will attend TVK Allies meet. VCK Chief has reacted to the recent resignations of AIADMK MLA, saying that such sudden resignations are not good for democracy. And VCK has also made sure that he stands and they stand with the party of Vijay. Take a look at the reactions coming in.
2: அது அங்க போய் பேசின பிறகு தானே தெரியும். முன்கூட்டியே இப்படி நானா சொல்ல முடியாது இல்ல, நான் எப்படி அதை சொல்ல முடியும்? நான் அவங்க இப்ப வந்து ஒரு தேநீர் விருந்துங்கிற அடிப்படையில் தான் அழைச்சிருக்கிறாங்க. கட்சி தலைவர்களை மட்டுமின்றி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், இப்ப எங்க கட்சியில ரெண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், ரெண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், தலைவர் என்கிற முறையிலும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்கிற முறையிலும் நானும் அதில் பங்கேற்கிறேன். ரவிக்குமார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்கிற முறையில் அவர் பங்கேற்பார். அதேபோல் வன்னி அரசு, ஜோதிமணி ஆகிய நால்வரும் பங்கேற்போம். கூடுதலாக பொதுச் செயலாளர் சிந்தனை செல்வன் அவர்களும் அதில் பங்கேற்க உள்ளார்.
3: வி ஆர் நாட் அ ஃப்ரெண்ட்லி பார்ட்டி, வி ஆர் தி மெயின் ஒப்போசிஷன் பார்ட்டி, அண்ட் வாட் எவர் தே டூ ஹேஸ் டு பி ஸ்ட்ராங்லி அப்போஸ்ட், பிகாஸ் திஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் டூயிங் எனி திங் விச் தே ஹேட் ப்ராமிஸ்ட் பிஃபோர் எலெக்ஷன்ஸ். So we will have to fight it out.
1: An 11-year-old boy, Vihan Srivastava, has died and four other children were injured in Mumbai's Chembur after a large tree collapsed onto their school bus. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered a probe into the Chembur incident, ensuring that aid will be given to injured children. Chief Minister of Maharashtra also spoke to Municipal Commissioner Ashwini Bhide and Mayor Ritu Tavare to review the Chembur incident. The CM directed authorities to provide all necessary assistance and ordered a thorough probe with strict action against those responsible. Listen in to what the mayor had to say when my colleague Anuj talked about this incident.
4: बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, एक बच्चे की जान चली गई है अनफॉर्चुनेटली. आप अंदर गई थी, काफ़ी समय आपने अंदर बिताया, क्या देखा आपने?
5: बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही पेनफुल है ये सब. मुझे खुद को यहाँ पे एज अ मेयर ने माँ के तौर पे मैं बच्चे को देखा, मुझे बहुत बुरा लगा. माँ पिताजी स्पीचलेस थे, मैं क्या बात करूँ उनसे. लेकिन मैंने स्पॉट पे मैं गई थी, वहाँ पे ये जो यूनिवर्सल स्कूल की जो बस है, वैन है, वो जा रही थी और उसके अंदर 13 बच्चे थे. 12 बच्चों का रेस्क्यू किया, लेकिन एक बच्चा जो है वहाँ पे पूरा बहुत ही डेंजरस परिस्थिति में इंजर्ड हुआ और उसकी डेथ हो गई. यहाँ पे मैंने पालिका प्रशासन के पास से पूरा ब्यौरा लिया. रोड नंबर 11 पे जितने भी पेड़ है उसका ट्रिमिंग हुआ था क्या, तो उन्होंने हाँ बोला. मैंने खुद इस रोड का ये विज़िट किया था जब मैं सीसी रोड यहाँ का बन रहा था, तभी मैं खुद आई थी ये पूरा काम देखने के लिए. तो अगर मुझे अभी वहाँ पे पता चला कि स्थानिक लोगों ने उसके ऊपर कुछ कंप्लेंट दी थी कि ये डेंजरस जोन पे पेड़ है, अगर वो कंप्लेंट मिलती है और तो भी MVS के अधिकारी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, तो निश्चित उनके ऊपर कार्रवाई होगी.
1: Let's shift our focus to what's happening in the US. A divided Supreme Court upheld a broad conception of birthright citizenship, rejecting US President Donald Trump's executive order, declaring that children born to people who are in the US illegally or temporarily are not American citizens. The justices relied on a long settled

0: तो रूम लॉक्ड होने से कोई पेशेंट के ट्रीटमेंट में फर्क पड़ रहा हो ऐसा नहीं है? पेशेंट का तो जो रेगुलर ट्रीटमेंट जो एंड स्टेज रिनल डिजीज वाले पेशेंट्स का होता है, जो उनका न्यूट्रिशन है, जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो उनका सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जो डायलिसिस है, वो चल रहा है हाँ, उसकी वजह से नहीं, कमरा ये था कि कमरा बंद है इसलिए ट्रांसप्लांट रुक गया, कमरा बंद होने से तो ट्रांसप्लांट नहीं रुकता है।
1: Following questions over the delays, hospital authorities have reassigned the pending transplant cases. For Jayanti Lal and Anita, that has brought a glimmer of hope. Doctors have now assured them that if their medical parameters remain stable, Anita's transplant could be performed.